0: संत कबीरदास हथकरघे पर कपड़ा बुनते रहते थे। उनके पास रोज ही कई जिज्ञासु आते थे, जिन्हें तर्कपूर्ण प्रमाण देकर वो कल्याण का मार्ग बताते थे। अपने पास आने वालों को वो दुर्व्यसनों से, नशे से सदैव दूर रहने की प्रेरणा भी देते थे। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु काशी पहुंचे। वो कबीर के दर्शनों के लिए भी गए। उनमें से कुछ चिलम सुलगाकर तंबाकू पीने लगे। कबीर ने साधु से पूछा, तंबाकू के नशीले धुएं में तुम्हें क्या फायदा मिलता है, बताना तो। उसने कहा, कुछ क्षणों के लिए मस्ती में खो जाता हूं। कबीर ने कहा, इस विषैले पदार्थ के कारण तुम अपने शरीर को जला रहे हो। यदि वास्तव में सच्ची मस्ती का अनुभव करना है तो ऊपर वाले का नाम का नशा चढ़ाकर देखो। तंबाकू का विष मन, मस्तिष्क और शरीर को विकृत कर देता है, जबकि ऊपर वाले का नाम, उसका नशा ही कुछ और है। कबीर के शब्दों ने जादू का काम किया और वो साधु फिर कभी ना नशा करने का संकल्प ले बैठा। एक बार एक व्यक्ति ने कबीर से पूछा, सांसारिक प्रपंच में फंसकर भगवान को कैसे याद करें? कबीर ने कहा, जैसे पत्नी पोहर में रहते हुए भी पति के ध्यान में लीन रहती है, उसी तरह मनुष्य सांसारिक कार्यों में जुटे हुए भी भगवान का चिंतन में लगा रह सकता है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं।

बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे, क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया, और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर के बारे में, जिनका नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। वो भी लाजवाब जमाना था, देश आजाद हो गया था। तब तोला भर सोने की अंगूठी के लिए करीब 100 रुपए लग जाते थे और आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए 140 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता था। 20 की हो चुकी ये मलयाली युवती क्लर्क की नौकरी करती थी और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परीक्षा का फार्म भर सके। वो सोचती थी कि स्नातक करने के बावजूद क्या वो सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएगी। नए आजाद हुए देश में सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रयास में भला क्या हर्ज है। एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें, ना कुछ होगा तो तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फार्म भरने के पैसे दे दिए। युवती ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का उन्होंने इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया, युवती हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी, विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कुछ चुन लो। पर वो अड़ गईं, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालात देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, किसी लड़की से ये सब हो सकेगा? भला हो महान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु। वहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी रामगोपालाचारी। आईएएस रूप में युवती को देखकर चौंक गए, ये कैसे, सब कलेक्टर कलेक्टर बनेगी फिर फील्ड ड्यूटी में जाएगी। उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर यहां भी वो युवती अड़ग रही, नहीं मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव नहीं कीजिए। खैर, रामगोपालाचारी ने भी उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठीचार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था। पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आ गया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। 6 हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था, भगाए नहीं भाग रहे थे वो। ग्रामीणों को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टर के यहां पहुंच गए, पर सामने एक महिला को देखकर बड़े निराश हुए। ये कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेगी। पल भर के लिए सब कलेक्टर भी स्तब्ध रह गईं, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिया कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ। सब लोग मिलकर शोर करने लगे। ग्रामीणों ने टीन बर्तन लेकर शोर करना शुरू कर दिया, वो भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गईं। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुनकर दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़कर आए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई हैं, अन्ना राजम जॉर्ज। सबने माना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिलाओं की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया। अब हर साल दसियों युवतों के चयन आईएएस के लिए होते हैं और अन्ना राजम जॉर्ज की याद अचानक ही आ जाती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वो भी था जब अन्ना राजम जॉर्ज की सेवा शर्तों में ये शामिल था कि अगर वो विवाह कर लेंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई,
अन्ना ने जल्द ही खुद को काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: परम विरक्त संत राम सुखदास जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मान अपमान की भावना को छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है उसे कोई अभाव हो ही नहीं सकता। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न कर लिया, मैं रोजी रोटी जुटाने के लिए इतना व्यस्त रहता हूं कि भक्ति उपासना कर ही नहीं पाता, मेरा कल्याण कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा, आप चार संकल्प ले लीजिए। पहला, किसी का जीना दुखाइए। दूसरा, यथासंभव असहाय और रोगियों की सेवा कर दीजिए। तीसरा, सत्य बोलिए। और चौथा, सवेरे शैया त्यागने से पहले और रात में सोने के समय भगवान को याद कर लीजिए। कपट चालाक और छल से दूर रहिए। कपट चालाकी और छल से दूर रहिए, भगवान खुद ही मिल जाएंगे। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, वास्तव में भगवान ने सबको अपना मान रखा है, लेकिन हम अपनी असीमित इच्छाओं के लालच में चलकर झूठ कपट वगैरह की शरण लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि बिना झूठ कपट के सफलता ही नहीं मिलेगी। अब ये भ्रम ही हमारा पतन का कारण है। छल कपटी और दुराचारी को भगवान कदापि सहन नहीं करते, जबकि निर्मल हृदय वाले सदाचारी भक्त भगवान की कृपा के लिए हमेशा ही प्रस्तुत रहते हैं।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: अजमेर में स्वामी दयानंद जी का निर्वाण अर्ध शताब्दी समारोह चल रहा था। देश भर के आर्य सन्यासी और विद्वान समारोह में थे। महान शिक्षा सेवी महात्मा हंसराज जी भी लाहौर से समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। स्वामी सर्वदानंद जी ने कुटिया में कुछ आर्य समाजी संतों को बुलाया और उनसे कहा, स्वामी जी, हम सभी की इच्छा है कि महात्मा हंसराज जी जैसी दिव्य विभूति से संन्यास ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इससे आर्य समाज को बहुत बल मिलेगा। स्वामी सर्वदानंद जी ने उनसे कहा, जिन महात्मा हंसराज जी ने अपना पूरा जीवन आर्य समाज के प्रचार और जगह जगह विद्यालयों की स्थापना करने के लिए समर्पित कर दिया है, क्या उन्हें आप गेरुआ वस्त्र न पहनने के कारण सन्यासी नहीं मानते? कुछ देर रुककर स्वामी जी ने कहा, केवल कपड़े रंग लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। जिसका मन परोपकार और सेवा के कार्यों में लगा हो वो तो खुद ही सन्यासी हो जाता है। कपड़े रंगने के बाद भी अपना जीवन सेवा और धर्म प्रचार में नहीं लगाता, उसे साधु कैसे कहा जा सकता है? सन्यासी की वास्तविक व्याख्या सुनकर सभी गदगद हो गए।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। हम अक्सर बोल देते हैं, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी राशि ऐसी ही है। लेकिन क्या सिर्फ राशि एक टैग है, या फिर एक दर्पण है जिसमें हम अपनी आदतें, अपने डर, अपनी ताकत देख सकते हैं? आज हम सरफेस लेवल के ट्रेड्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे हर राशि के अंदर छुपे मनोवैज्ञानिक पैटर्न की, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शैडो और उनका जीवन मंत्र। चलिए शुरू करते हैं एक गहरी सच्ची यात्रा। मेष, शुरुआत करने वाले। मेष लोग जन्म से पायनियर होते हैं, इनके अंदर एक अलग सी आग होती है कुछ नया करने की। इन्हें रुकना पसंद बिल्कुल नहीं है, इन्हें कंपीट करना बहुत पसंद है। साइकोलॉजी के लेवल पर देखें तो सबसे ज्यादा डर अगर मेष राशि वालों को किसी चीज का होता है तो वो ये है कि उन्हें लोग भूल जाएंगे, इसीलिए ये हर जगह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, पहला कदम हमेशा लेना चाहते हैं। पर जब चीजें इनके हिसाब से नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है इनमें। इनकी ताकत इनका करेज, हिम्मत इनकी कमजोरी, इनकी जल्दबाजी और इनका जीवन मंत्र, हर जंग लड़ना जरूरी नहीं है मेष राशि वालों, कभी कभी शांति भी जीत होती है। वृषभ राशि, वृषभ को सुकून चाहिए और कुछ नहीं, स्टेबल रिश्तों का, स्टेबल करियर का, स्टेबल जीवन का। इनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल नीड है सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये लोग तब फलते फूलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि जमीन मजबूत है, पर इसी सिक्योरिटी की वजह से ये बदलाव से बहुत ज्यादा ही डरते हैं, चेंज इन्हें पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी लॉयल्टी और इनकी कंसिस्टेंसी, और इनकी कमजोरी इनकी जिद और कंफर्ट जोन से चिपक जाना। इनका जीवन मंत्र, जो टूट रहा है शायद वही जगह बना रहा है नए के लिए। मिथुन राशि, विचारों के यात्री। मिथुन का दिमाग कभी रुकता नहीं, ये ऑब्जर्व करते जाते सवाल पूछते ही रहते, एनालाइज करते ही रहते हैं। इनकी साइकोलॉजी का बेस है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। इन्हें सब कुछ जानना है, सब समझना है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब माइंड ओवरलोड हो जाता है, फोकस टूट जाता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी कम्युनिकेशन और अडैप्टेबिलिटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी डेप्थ यानी गहराई की कमी। सब कुछ ऊपर ऊपर से देखना है, अंदर झांकने की कोशिश शायद इन्होंने कभी नहीं की। इनका जीवन मंत्र, हर बात जानना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसमें गहरा उतरना जरूरी है। कर्क राशि, भावनाओं के रक्षक। कर्क राशि के लोग इमोशनल इंटेलिजेंस से भरे हुए होते हैं, ये लोग रूम का मूड फील कर लेते हैं। इनका सबसे बड़ा नीड है बिलोंगिंग, इन्हें अपनापन चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए, एक सेफ स्पेस चाहिए। पर जब उन्हें लगता है कि उनकी केयर का रिटर्न नहीं मिल रहा तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और बहुत गहराई से हर्ट होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संवेदनशीलता, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनके मूड स्विंग्स,
और बार बार पास से जाकर चिपक जाना। इनका जीवन मंत्र, हर याद को संभाल कर रखना जरूरी नहीं, कुछ को आशीर्वाद देकर जाने देना चाहिए। सिंह राशि, प्रकाश के वाहक। सिंह को स्पॉटलाइट पसंद है, पर स्पॉटलाइट सिर्फ ईगो नहीं होता, ये इनकी नेचुरल वार्मथ है। साइकोलॉजी के हिसाब से सिंह का सबसे बड़ा डर होता है इग्नोर हो जाना, इसीलिए ये लाउड भी हो सकते हैं और आपको लग भी सकते हैं कुछ ज्यादा ही लाउड, पर इनका दिल बहुत बड़ा होता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी जेनरोसिटी और नेचुरल लीडरशिप। ये कहीं भी किसी भी क्राउड को अपने आप लीडरशिप से मोहित कर सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका बड़ा सा ईगो। इनका जीवन मंत्र, सच्चा राजा वो है जो सबको साथ लेकर चले। कन्या राशि, कन्या हर चीज को बेटर बनाना चाहती है। इनकी नजर डिटेल्स पकड़ती है और गहराई पकड़ती है। इनका इनर पैटर्न होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर कभी कभी ये इम्प्रूवमेंट को ऑब्सेशन बना लेते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म इनका सबसे बड़ा बोझ है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका डिसिप्लिन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी खुद पर बहुत कठोर हो जाना। जीवन मंत्र, जो आप कर चुके हैं उस पर गर्व कीजिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हम इंडियंस का असली टैलेंट क्या है पता है? ऑनलाइन 1999 का प्रोडक्ट देखकर बोलते हैं, अरे महंगा है। फिर 1899 का देखते ही मन से एक बात निकलती है, वाह 100 रुपीज बचा लिए। प्रोडक्ट वही है पर फीलिंग बिलियनेयर वाली।

दिमाग, किस्मत और फ्री विल, हम चुनते हैं या हमें चुना जाता है। दोस्तों, कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, जो फैसले मैं लेता हूं क्या वो सच में मैं ले रहा हूं, या वो मेरा दिमाग पहले ही डिसाइड कर चुका है, या फिर कहीं सितारे भी इस कहानी का हिस्सा तो नहीं। आज हम बात करेंगे तीन चीजों की, न्यूरोसाइंस, फ्री विल और एस्ट्रोलॉजी। तीनों अलग लगती हैं, पर कहीं ना कहीं एक ही सवाल जुड़े हैं, इंसान कितना आजाद है। पहला अध्याय, दिमाग का राज। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? ये कहती है कि हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। हर सोच, हर इमोशन, हर डिसीजन न्यूरॉन्स के बीच चलने वाली छोटी सी बिजली की लहरों का एक नतीजा है। रिसर्च में ये पाया गया है कि कभी कभी हमारा दिमाग डिसीजन ले लेता है और हमें उसका एहसास मिलीसेकंड्स बाद होता है। सोचिए, आपने हाथ उठाया, आपको लगा आपने डिसाइड किया, पर एक्सपेरिमेंट बताता है दिमाग ने सिग्नल पहले ही भेज दिया था। तो सवाल ये है, अगर दिमाग पहले ही तय कर लेता है तो मैं कहाँ हूं? क्या फ्री विल सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज है, एक दूर का इल्यूजन है? दूसरा अध्याय, सितारे और ग्रह। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष कहती है, जब आप पैदा होते हो उस वक्त ग्रहों की पोजीशन आपके स्वभाव और आपके जीवन की दिशा पर असर डालती है। ये कहती है आपका टेम्पर, आपका गुस्सा, आपका डिसीजन लेने का तरीका, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सब कुछ एक कॉस्मिक पैटर्न है। अब न्यूरोसाइंस कहता है आपका बिहेवियर दिमाग के स्ट्रक्चर और हार्मोन से आता है, और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपका पैटर्न जन्म के वक्त ही सेट हो जाता है। दोनों अलग जुबान बोलते हैं, पर दोनों एक बात मान रहे हैं, इंसान का एक पैटर्न जरूर है और एक पैटर्न में ही चल रहा है। तीसरा अध्याय, फ्री विल बीच में कहां है? फ्री विल का मतलब है मैं अपनी मर्जी से चूज करता हूं, पर अगर मेरा दिमाग केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है और मेरी पर्सनालिटी एक जन्म कुंडली के पैटर्न से बंधी हुई है, तो मेरी मर्जी कहां है और कितनी मेरी है? ये डिबेट बहुत सालों पुरानी है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं फ्री विल पूरी तरह से एक इल्यूजन नहीं है। हमारे पास एक पॉज बटन जरूर होता है, इम्पल्स आता है जैसे गुस्सा, लालच, डर, पर हम इम्पल्स पर एक्शन लें या रोकें, ये हम सीख सकते हैं। इसी ट्रेनिंग, इसी अवेयरनेस को कहते हैं फ्री विल, और यही एक बीज हो सकता है अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी गुस्सा आता है। न्यूरोसाइंस कहेगा आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर ज्यादा एक्टिव है। एस्ट्रोलॉजी कहेगी आपका मास स्ट्रॉन्ग है। पर दोनों के बीच एक तीसरा सच है, आप अपने रिएक्शन को धीरे धीरे समझ के बदल सकते हो। मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, थेरेपी, ये सब दिमाग के सर्किट्स को बदलते हैं। मतलब पैटर्न लिखा हो सकता है, पर कहानी पूरी तरह पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। किस्मत वर्सेस चुनाव। सोचिए, जिंदगी एक नदी है। एस्ट्रोलॉजी कह सकती है नदी का सोर्स और डायरेक्शन पहले से ही तय है। न्यूरोसाइंस कह सकता है पानी का फ्लो ग्रेविटी और टेरेन डिसाइड करता है। पर फ्री विल क्या है? फ्री विल शायद ये है कि आप नदी में तैरना सीख सकते हो, धारा के साथ या उसके खिलाफ। पानी को रोक नहीं सकते, पर अपनी चाल संभाल सकते हो। आज का जमाना, आज के समय में ब्रेन स्कैन मशीन बता सकती है कि कौन सा हिस्सा कब एक्टिव हो रहा है। एस्ट्रोलॉजर जन्म का समय देखकर आपका टेम्परमेंट बता सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर आपको पता चल जाए कि आपका ये पैटर्न है, तो क्या आप उस पैटर्न के गुलाम रहोगे या उसे समझकर
उसका फायदा उठाकर उस पर काम करोगे। एक गहरी सोच, शायद फ्री विल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं। शायद फ्री विल का मतलब ये है

आजाद तो नहीं हैं, पर हम पूरी तरह बंधे हुए भी नहीं हैं। हम एक पैटर्न के साथ पैदा होते हैं, पर उस पैटर्न को समझकर उसे इवॉल्व करना शायद वही इंसानियत का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई फैसला लेना हो, एक पल रुककर जरूर सोचिए, ये मेरे दिमाग का इंपल्स है, मेरी कुंडली का पैटर्न है, या मेरी सजग सोच का चुनाव है। हो सकता है तीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो, और शायद यही जिंदगी का असली राज है। हम लिखे हुए भी हैं और लिख भी रहे हैं, जरा लिख कर देखिए।

पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आजा रे आ जरा आ लहरा किया जरा आंखों से दिल में।

0: से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
2: शादी में कोई रिलेटिव मिलते ही बोलता है, बेटा कितना कमा लेते हो, शादी कब कर रहे हो, वेट थोड़ा बढ़ गया है ना। मैं सोचती हूँ आप लोग रिश्तेदार हो या एंजल परफॉर्मेंस अप्रेजल की कमिटी। और सबसे डेंजरस लाइन, तुमसे छोटी वाली की शादी हो गई क्या? मतलब कंपैरिजन का ओलंपिक चल रहा है और मुझे पता भी नहीं था कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ।

पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ।

तुला राशि। तुला का मिशन है बैलेंस। ये कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं हर लेवल पे, हर कीमत पर। इनका साइकोलॉजिकल नीड है शांति, पर कभी कभी दूसरों को खुश करते करते अपनी आवाज खो देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत डिप्लोमेसी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका डिसीजन नहीं ले पाना। जीवन मंत्र, अपनी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरों की। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सुपरफिशियल नहीं होते, इन्हें सच चाहिए और सिर्फ सच, पूरा सच। इनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पैटर्न है कंट्रोल और ट्रस्ट। ये तब तक दिल नहीं खोलते जब तक श्योर ना हो जाएं, पर जब ट्रस्ट हो जाता है तो लॉयल्टी अनमैच्ड होती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका ट्रांसफॉर्म होने की कैपेबिलिटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनके शक की आदत। जीवन मंत्र, हर इंसान दुश्मन नहीं है, कभी कभी जिंदगी को सरप्राइज देने दो। धनु राशि। धनु को बंधन पसंद नहीं है, इन्हें एक्सप्लोर करना है जगह भी विचार भी। इनका कोर नीड है फ्रीडम, आजादी, बट कभी कभी कमिटमेंट से बचने लगते हैं ये लोग। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी पॉजिटिविटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी रेस्टलेसनेस, किसी भी करवट चैन ना पा पाना। जीवन मंत्र, आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। मकर राशि। मकर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनका साइकोलॉजिकल बेस है अचीवमेंट, और इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए हर कीमत पर, कभी कभी इमोशंस को साइड कर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका पेशेंस और इनका एम्बिशन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका इमोशनल डिस्टेंट हो जाना बार बार। जीवन मंत्र, सफलता तब और सुंदर लगती है जब किसी के साथ बांटी जाए। कुंभ राशि। विचारों के क्रांतिकारी। कुंभ अलग सोच के होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। इनका सबसे बड़ा पैटर्न है इनकी इंडिविजुअलिटी, पर कभी कभी इमोशनल कनेक्शंस कम हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनोवेशन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बात बात पे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना समाज से। जीवन मंत्र, बदलाव दिल से शुरू होता है, सिर्फ आइडिया से नहीं। मीन, सपनों के सौदागर। मीन इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनकी बेसिक नीड है इमोशनल यूनिटी, सब साथ चले, पर कभी कभी रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं ये लोग। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी इमेजिनेशन और इनकी संवेदनशीलता, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बात बात पर भाग जाना, जगह छोड़ के किसी और जगह चले जाना। जीवन मंत्र, सपनों को पंख दो पर जमीन मत छोड़ो। दोस्तों, राशियां लेबल नहीं होती, वो पैटर्न्स होती हैं। हर साइन एक कहानी है, हर साइन एक सफर है, और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ अपनी राशि नहीं हैं, आप अपनी चॉइसेस भी हैं। सितारे दिशा देते हैं, पर मंजिल पर चलना आपको ही है। आज अपनी राशि को समझिए, पर उसे एक्सक्यूज मत बनाइए, उसे एक अवेयरनेस बनाइए, क्योंकि जब इंसान अपनी प्रकृति को समझ लेता है तब वो अपनी किस्मत को लिखने लगता है। राशियां आसमान में होती हैं, पर उनका सच दिल में जगता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी, पर असली रीजन बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायणी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में यह 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूँ। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लेना, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और, किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है, कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत हजारों रुपए जानकर तो वो हैरान ही रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी
ये किसी राम बाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया, जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा,

0: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूं। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से, बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूँ। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है, कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी ये है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: हमारे जल संसाधन।
3: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
4: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
3: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
4: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
3: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
4: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है और उसके नीचे भूमिगत जल।
3: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
4: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
3: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
4: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
3: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
4: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है।

या किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है। या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम चाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाए इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं।
2: अमित बेटा।
3: जी माँ।
2: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
3: ठीक है माँ।
2: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
3: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
2: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
3: अच्छा माँ।

0: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
1: अरे हाँ सुनो दीदी।
0: हाँ
1: ये जंगल कैसा होता है?
0: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
0: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
0: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
0: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
0: अच्छा
2: समझे? हाँ, ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई, अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ, और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा, पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
0: अच्छा, वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
0: अच्छा।
2: और बेटे, अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
0: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो, वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
0: अच्छा।
2: हाँ, पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
0: अच्छा।
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें, जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
0: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
0: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काट कर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
0: अच्छा।
2: हाँ, बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
0: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
0: अच्छा।
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
0: अच्छा दादाजी। दादाजी, ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा, झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
0: अच्छा, ऐसा करते हैं?
2: हाँ, इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
0: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
0: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए

0: लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
0: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
0: बोलो बेटे।
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
0: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
0: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: अरे रेंजर चाचा आप आइए। नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर आओ भाई और सुनाओ कैसे हो। आओ इधर आओ इधर।
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा और सुनाओ बच्चों दादाजी से क्या बातें हो रही थी।
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए।
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर,
2: बिल्कुल,
1: और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों।
0: हाँ दादाजी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा।
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो चलो। मैं भी पेड़ लगाऊंगा। हाँ मैं भी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं।
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं।

0: जाती। अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
1: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
0: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
1: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
0: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
1: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
0: ठीक है,
1: चल चल चल, हट हट।
0: ये अब नहीं निकलेंगी।
2: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
3: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती, तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
0: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
1: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख

0: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
1: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
0: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
1: अरे
2: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
0: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
3: अरे
4: सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
1: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
2: सुनो तो। रुक जाओ।
0: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
1: गई।
0: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
5: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी सुन कर ये।
0: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो ना जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
2: तुम्हारे बस की नहीं है।
6: फिर कोशिश करता।
0: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
1: अब देखो,
0: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा चींची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके, बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
6: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो, माँ पिताजी वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
2: अरे हाँ बेटे।
0: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
2: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया, आ जाओ गोरैया।
0: और तभी गोरैया झट से उड़कर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
1: अरे
0: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
1: सच में
7: छोटे और बड़े।
8: अरे छोटे बड़े
9: जी, दादा जी,
8: मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
9: जी दादा जी।
8: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो। हाँ जाओ बेटा।
10: ओ भाई छोटे।
11: हाँ भाई बड़े,
10: आज हम पार्टी करते हैं।

0: हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
1: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
0: हाँ भाई बड़े, ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
1: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
0: हाँ भाई बड़े, मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
1: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
0: हाँ हाँ, हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
2: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो। नहीं समझ आया? तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे। और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी, इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: मिल गई।
1: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली।
2: तो रोटी और चावल मिले।
1: बहुत स्वादिष्ट है। छोटे?
3: हाँ भाई बड़े।
1: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
3: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
1: एक कुरेद दो।
4: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
5: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
6: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
5: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।

0: में। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
1: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: नमस्ते डॉक्टर साहब।
2: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
0: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
2: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
3: चीनू।
2: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुंह खोलो, मुंह खोलो, थोड़ा सा और, एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो, बस अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे, क्यों है ना कमला जी?
0: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
2: देखो बेटा, कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है, है ना? कितने अच्छे लगते हैं दांत, तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे, ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ, समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
0: जी बिल्कुल,
2: है ना?
3: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
0: डॉक्टर साहब, इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठे के बगैर नहीं रह सकती।
2: समझ गया। देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ, खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश, समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना, तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी। लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
1: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
4: अरे भाई छोटे।
3: हाँ भाई बड़े।
4: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
3: हाँ
4: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
3: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
4: हाँ चलो चलो, दादाजी दादाजी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है,
3: भूख लगी है।
5: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहाँ जगह बनाते हैं। चलो
4: चलो
5: आओ,
4: चलो
3: चलो
4: दादी चलो।
1: इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
2: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है
2: तो दोनों को ही खानी।
3: हाँ, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वो वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
2: बताइए
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबाव ज्यादा
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी
5: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
7: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और कार्यक्रम लेकर आए हैं हम। कार्यक्रम का नाम है खेती बाड़ी कार्यक्रम और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपना रेडियो, आपनी बातें। इस कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं उन सिगमेंट प्लांटों पर बात करते हैं जो हमारे खेती किसानी में हमारे किसान साथियों के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। अभी चूंकि खेती किसानी में हमारे किसान साथी घर पर बैठे होंगे क्योंकि सीमित उनके पास जमीन है और उन्होंने खेती वो कर अपनी उत्पादन लेकर अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब अपने हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं ऐसी गर्मी के मौसम में, तो किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत लेकर आए हैं, यानी टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं, चूंकि पथरीला इलाका है, पानी कम है, किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं और अपने खेत की आय को बढ़ा सकते हैं।

अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके के बीज लगने होंगे और किस तरीके के मौसम की जरूरत होती है और किस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है, इस बात पर हम जिक्र करेंगे आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में। साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि खेती गाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों को लिए वो छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो उनके आय को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहती हैं। हम और आप देख रहे हैं कि खेती करना कितना मुश्किल हो गया है और ऐसे में किसान साथी, चूंकि हम और आप देखते हैं कि सीमित उनके पास जमीन है, पथरीला इलाका है, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें का भी चयन हमारे किसान साथी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, साथ साथ में केबी है वहां पर जाकर भी संपर्क करना होगा, तब जाकर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर हम अपने किसान साथियों को छोटी छोटी बातों को बताएंगे और साथ साथ में आप उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम नर्सरी पर भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में अगर जैविक पद्धति की बात करें, क्योंकि जैविक खेती करना ये अब धीरे धीरे अब हमारे किसान साथियों के जहन में आ गया है कि अब हमें रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, चूंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी जो खेत खाली पड़े हुए हैं उनकी जुताई कर लें, जुताई के साथ साथ जो पराली रहती है पराली जलाए नहीं, आप उससे खाद उत्पादन कर सकते हैं और खाद से जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और उनसे भी अपने आय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लागत जब कम लगेगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि होगी। तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसान साथियों को टमाटर की नर्सरी किस तरीके से लगा सकते हैं उस पर जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, विषय विशेषज्ञ के पास आपको ले चलेंगे। लेकिन इस जानकारी से पहले आपको करा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से भीली गीत के साथ। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भी 90.8 FM, आप रेडियो आप ही बात है।

सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं हमारे वैज्ञानिक से, हमारे विषय विशेषक से, किस तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं टमाटर की, क्योंकि बहुत महंगा टमाटर चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, नर्सरी करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आय भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विषय विशेषक की इस चर्चा को।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है। आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 के डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है। हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे, तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें, तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, कि आप देखें पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है, जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो ये है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और

0: 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रोन वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा, और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है, तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं। और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहे तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा उससे। फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: जय दिवाली, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें, बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं, सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डायथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डायथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये, 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोण से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी। और कहना

0: कहना कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: सत्यली कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना

रेडियो टांडा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और मित्रों कैसे हैं, आपने जानकारी पाकर हमें आशा है कि हमारे किसान साथी जरूर अपने खेतों में नर्सरी लगाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए पथरीला इलाका है तो हमारे किसान साथी सब्जी भी लगा सकते हैं, साथ साथ में नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। एक और जानकारी थोड़ा देना चाहते हैं, टमाटर से जुड़ी है, क्योंकि टमाटर उगाने के लिए जलवायु परिस्थितियां किस तरीके की होनी चाहिए, पुष्पन एवं फल बनने के लिए भारी बारिश बादल नुकसानदायक है क्योंकि यह फूलों और फलों को गिरने का कारण बनता है। ये पौधे पाला और अधिक नमी के सामना नहीं कर पाते हैं, अधिक नमी के कारण फल सड़ जाते हैं। फल उगने बनने के समय तेज धूप के कारण गहरे लाल रंग के फल विकसित होते हैं, क्योंकि धूप अच्छी पड़ रही है तो ऐसे में किसान साथी कर सकते हैं अपनी खेती को लगा सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं। तापमान की अगर बात करें 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के कारण पौधे का विकास रुक जाता है। यदि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो फलों का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभिक वृद्धि अवस्था पर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से विकास रुक जाता है। टमाटर के लिए आदर्श तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टमाटर की फसल में पानी की आवश्यकता आमतौर पर सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर उगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का साथ ड्रिप सिंचाई की सलाह भी दी जाती है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी अपने कृषि विस्तार अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और कैसे उगा सकते हैं उस पर भी अपन ध्यान केंद्रित कराएंगे। फसल में पानी की आवश्यकता 600 से 1500 मिलीलीटर वर्षा के बराबर होनी चाहिए। और उचित मिट्टी की अगर बात करें तो अच्छी जल धारण क्षमता वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। आवश्यक स्तर 6.0 से 7.5। यदि पीएच आपका 6.0 है तो चूना डालें, यदि पीएच 7.5 है तो जिप्सम डालें उसमें, तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में आइए एक और गीत को सुन लेते हैं और इसके बाद हम किसान साथियों के लिए बताएंगे कि इस तरीके से बर्मी कंपोस्ट हमारे किसान साथी कर सकते हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। बने रहिए आपके आरजी मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम। आपका रेडियो अपनी बात है।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, भीली गीत का आनंद लिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे किसान साथियों की खेत खाली है तो अभी क्या कर सकते हैं, वर्मी कम्पोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कम्पोस्ट कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, पशु मल, मूत्र एवं पत्तियों के डी कम्पोस्ट की विशेष प्रजाति के केचुआ के सहयोग द्वारा कम्पोस्ट में बदला जाता है। यह प्रतिक्रिया पर्यावरण स्वच्छता के साथ साथ कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। यह प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु के साथ साथ किसानों के लिए अति उपयोगी है। वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही साथ फसलों की पैदावार व गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मृदा पर होने वाले दुष्प्रभावों का वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से सुधार होता है। इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को टिकाऊ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अनुमानतः 1 किलोग्राम भार में 1000 से 1500 केचुआ होते हैं। प्राय 1 केचुआ 2 से 3 कोकीन प्रति सप्ताह पैदा करता है। तत्पश्चात हर कोकीन से 3 से 4 सप्ताह में 1 से 3 केचुआ निकलते हैं। 1 केचुआ अपने जीवन में लगभग 250 केचुआ पैदा करने की क्षमता रखता है। नवजात केचुआ लगभग 6 से 7 सप्ताह तक प्रजननशील अवस्था में आ जाता है। प्रतिदिन 1 केचुआ लगभग अपने भार के बराबर मिट्टी खाकर कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। 1 किलोग्राम केचुआ 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 45 किलोग्राम अपघटनशील पदार्थों में से 25 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट 60 से 70 दिनों में तैयार कर देते हैं। अब इसकी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले केचुआ का चयन करना चाहिए। केचुआ का चयन कैसे होता है? वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिसमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र हो, प्राकृतिक तापमान के उतार चढ़ाव सहने की क्षमता हो व कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए आइसिनिया, फीडिया और यूडिलियस यूजिने व पेरोसिक्स उन्नाव जनपद के आसपास के क्षेत्रों में आइसिनिया फीडिया वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोगी पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट योग्य पदार्थ जो रहते हैं, इस प्रक्रिया के लिए समस्त प्रकार के जैव क्षतिशील कार्बनिक पदार्थ जैसे गाय, भैंस, भेड़, सुअर व मुर्गियों

आदि का मल, बायोगैस सलरी, शहरी कूड़ा, प्रायोगिक खाद्यान्न व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, आपको पता होगा फसल अवशेष अभी है, घास फूस व पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। इसमें चुनाव कैसे करें स्थान का, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां छप्पर की छाया या टीन का सेट, कंक्रीट छत का प्रबंधन करने की सुविधा हो, साथ ही तापमान, वर्षा, अन्य शत्रु जैसे कि चूहे, छिपकली, सांप, नेवला और पंछियां जो रहते हैं उसका प्रबंधन तय हो। बेड बनाना यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बर्मी कंपोस्ट बनाने के कई तरीके रहते हैं, किसान अपनी सुविधा एवं व्यवस्था के अनुसार उचित विधि का चुनाव कर सकता है। जैसे कि ज्यादातर किसान मुख्यतः एक विधि से बेड बनाते हैं जिसमें बेड बनाने के लिए 10 फीट लंबाई तथा 3 से 4 फीट चौड़ाई और 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई के आकार की पक्की ईंटों का बनाना चाहिए जिसे सीमेंट से जोड़ा जा सकता है और ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीमेंट का प्लास्टर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपोस्टिंग किसी भी प्रकार के पात्र जैसे मिट्टी या चीनी के बर्तन, बांस बेसिन, लकड़ी बक्से, सीमेंट टैंक आदि में किया जा सकता है। गड्ढों व बेड की लंबाई चौड़ाई उपलब्ध स्थान के अनुसार निर्धारित करें जिसकी गहराई व ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से अधिक न रखें। कंपोस्टिंग के लिए सबसे नीचे सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे यानी घास फूस, केले के पत्ते, नारियल के पत्ते, फसलों के डंठल की तह बिछाएं। इसके बाद इसे तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं और पानी का छिड़काव 1000 से 1500 केंचुआ प्रति मीटर की दर से छोड़ दें। इसके ऊपर सड़ा गोबर और विभिन्न व्यर्थ पदार्थ जिसके खाद बनाना चाहते हैं आंशिक रूप से सड़ाने के बाद डालें और इसे टाट व बोरी से ढक सकें। इस पर पानी का प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें ताकि नमी का स्तर 40% से ज्यादा रहे। कंपोस्टिंग हेतु छायादार स्थान का चुनाव करें जहां पानी का ना ठहरता हो। बेड की भराई करना प्रथम स्तर रहता है कि बने हुए बेड में सबसे नीचे 3 इंच मोटी ईंटों की टूटे हुए टुकड़ों से या कंक्रीट की तली बनानी चाहिए और उसका 1 से 2 इंच ढाल रखना चाहिए। उसमें एक जिस और ढाल है 2 से 3 इंच चौड़ा पाइप लगाना चाहिए जिस तरफ ढाल है। द्वितीय स्तर रहता है जल्दी ना सड़ने वाले पदार्थ जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों और सूखी भूसी या प्यार जो रहता है 4 से 5 इंच मोटी बिछा देना चाहिए। 7 दिन पुराने गौमूत्र से अच्छे से भिगा देना चाहिए। तीसरा स्तर रहता है कि द्वितीय स्तर के ऊपर 3 इंच मोटी सड़ी हुई गोबर की परत या गोबर गैस की निकली सलरी बिछाकर पानी में भिगो देना चाहिए। चौथा स्तर रहता है शेष बसी जगह में पशुओं का गोबर भर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। किसान अगर चाहे तो सब्जी के छिलके, भूसा, घास, पशुओं का बचा हुआ चारा आदि का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। 15 दिन पहले अतसड़ा हो जिसे केंचुआ खा सके आदि का उपयोग भी हम कर सकते हैं। बेड केंचुआ पर कैसे डालते हैं? बर्मी कंपोस्ट पिट के लिए एक विशेष प्रकार के केंचुए जिसे रेड बर्म कहते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम आइसिनिया फोडिया है इस पर प्रयोग करने अपने बने बेड में 10, 4 और 2.5 पेट भरे गोबर में 5 किलोग्राम केंचुआ को ऊपरी सतह पर फैला देते हैं और थोड़ी देर बाद केंचुआ सभी पेट में प्रवेश कर जाते हैं और ऊपरी सतह पर जूट से बने बोरे का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर जो टेम्परेचर रहता है उसके अनुसार पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर बेड हो उसके ऊपर बरसात और धूप को बचाने के लिए छत और छप्पर होना अति आवश्यक है। बर्मी कंपोस्ट जब खाद बन जाती है उसके कैसे निकालना चाहिए? जब खाद बन जाती है तो उसमें 7 दिन पूर्व से पानी का छिड़काव बंद कर देना चाहिए। कंपोस्ट को देखने चाय की पत्ती की तरह दिखने लगे और पकड़ने पर चिपकने नहीं चाहिए और बनी खाद में केंचुआ की संख्या कमी
और बर्मी में उपयुक्त पदार्थ के गलने के आधार पर खाद को बाहर लेना चाहिए। निकालते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खाद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर निकालते हैं और जिससे केंचुआ अपने आप नीचे चले जाते हैं। कंपोस्ट एकीकरण जो साधारणतः 60 से 70 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, इस अवस्था में पानी देना बंद कर दें जिसमें केंचुआ नीचे चले जाए और कंपोस्ट एकत्रित कर छान कर केंचुओं अलग कर दें और छाया में सुखाकर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर सील कर दें। उपयोग एवं उत्पादन कैसे होता, तैयार खाद को कहा उपयोग करना चाहिए इसकी योजना पहले बनानी चाहिए कि आप दलहनी की फसल अगर बोते हैं तो 2 टन बुवाई से पूर्व उसमें डाल देना चाहिए। तिलहनी की फसल में 3 टन रहता है बुवाई से पूर्व। मसाला व सब्जी अगर की फसल लगाते हैं तो 4 टन बुवाई से पूर्व। फूल वाली फसल लगाते हैं तो 5 टन बुवाई से पूर्व। फलदार पौधों का रोपण के समय 5 किलोग्राम या वृक्ष में अपन डालते हैं। गमलों में मिट्टी के भार के पर 10%। लॉन में अगर डालते हैं 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें डालना चाहिए। तो ये बर्मी कंपोस्ट बनाने की विशेष विधि को हमने जाना। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप लोग रेडियो आपड़ी बातें
1: She's crazy like

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम हमेशा करते हैं, हम किसी न किसी विशेषज्ञ को, किसी फील्ड के विशेषज्ञ को, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ को आपके सामने लाते हैं। हम उनसे बात करते हैं, बहुत सारी नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो आज हमारे साथ विजय कुमार साहू साहब हैं, जो कि दरअसल एक लाइफ कोच हैं, यानी कि हमारे जिंदगी की कुछ परेशानियां हों, कुछ उलझने हों, उनके बारे में वो सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल मैटर्स में, यानी कि वाणिज्य क्षेत्र में भी वो बहुत बहुत एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, तो हमें वहां पर भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, जैसे कि वो आपको बेहतर जान सके, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
1: जी सर, मैं सर इस समय भोपाल में रहता हूँ और मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रहा हूँ। और मेरा सिंपल जो मोटिव है, मेरा जो प्रथम उद्देश्य है, वो है व्यक्ति की लाइफ को उसके अकॉर्डिंग, जो वो बनना चाहता है, जो उसकी इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बनाने में सहयोग करना या मदद करना।
0: और जैसे आपने बताया था मुझे कि आप वाणिज्यिक क्षेत्र में भी आप एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, तो उसके बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बताया। विजय जी हमें इन दोनों विषयों में सहायता करेंगे, हमको बताएंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारी जिंदगी से ही संबंधित। विजय जी, हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम कभी खुश होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी चिड़चिड़ा जाते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। तो विजय जी, हम दुखी क्यों हो जाते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे दुखी होने के?
1: सर, व्यक्ति जो दुखी होता है, वह होता है जब वह अपने आप से बहुत ज्यादा आशाएं या इच्छाएं पाल लेता है, तो वो जो अति इच्छाएं हैं, इच्छाएं बहुत बुरी नहीं है, इच्छाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब वो ओवर ज्यादा, हद से ज्यादा इच्छाएं पाल लेता है, अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगता है, तो वो दुख का कारण होता है। और दूसरा एक चीज और होती है इसमें कि क्या होता है कि हम अपने आप से, अपने सराउंडिंग से समय समय पर कमिटमेंट करते रहते हैं, और जब वो पूरा नहीं कर पाते, चाहे उसका कुछ भी कारण हो, तो वो भी हमें जो है दुख का की ओर ले जाता है, क्योंकि फिर वहां से नेगेटिव वाइब्रेशन आने लगती है सराउंडिंग से।
0: जी बहुत खूब। तो विजय भाई, अगर ऐसा हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए? एक साधारण इंसान को क्या करना चाहिए? कुछ आसान सा तरीका बताइए।
1: देखिए सर, आसान सा जो तरीका है, बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है इसका। सबसे सिंपल तरीका जो है, पैटर्न ये है कि हम आशाएं रखें, इच्छाएं रखें, महत्वाकांक्षाएं रखें, लेकिन वह योग महत्वाकांक्षाएं होना चाहिए, योग इच्छाएं होना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कोई व्यक्ति किसी भी एज में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, उसके अकॉर्डिंग उसको आज, कल, आने वाला महीना, आने वाला साल, तो उसको यदि वो प्रोग्रामिंग करे, या वो खुद नहीं कराए, कर पाए तो किसी के सहयोग से करे या करवाए, तो फिर वो सिस्टमेटिक हो सकता है और उसका काम जो है सिस्टम से, एक नेचुरल सिस्टम से, एक प्रॉपर सिस्टम से चल सकता है। और इससे क्या होगा, वो पर डे हमारा जो अपना कैलकुलेशन है, श्याम एक चीज और वो कर सकता है, एक बात और, एक और प्रयास कर सकता है कि आज का दिन खत्म होने से पहले, रात को सोने से पहले, वह आज का उसका ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करे कि उसने क्या अचीव किया, क्या वो लर्न कर पाया, क्या लोगों को दे पाया। इस तरह से यदि करे तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं।
0: जी बहुत खूब। दोस्तों आपने सुना, तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं तो हम दुखी होने से बच सकते हैं। बहुत खूब।

0: तो आगे बढ़ते हैं साहू साहब। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा प्रश्न, कुछ पिछले प्रश्न से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ ही, वो भी हमारी जिंदगी से ही संबंधित है,
1: जी
0: कि हम जो कुछ भी डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य, टारगेट, वो हम अचीव क्यों नहीं कर पाते, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच क्यों नहीं पाते।
1: देखिए, लक्ष्य तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता उसका कारण है कि उसमें फोकस की कमी है। और एक चीज और है, फोकस के साथ साथ उसका जो डेलीगेशन है, उसका जो समर्पण है, उसकी कमी है। यदि व्यक्ति फोकस और समर्पित हो तो चाहे वो कितना भी कैसा भी उसका लक्ष्य हो, वो जरूर उस तक प्राप्त उस तक पहुंचेगा, और जो टाइम लिमिट है उससे पहले पहुंच सकता है। पर फोकस और जो है समर्पण की जरूरत है। और जब मैं बात फोकस की करता हूँ तो ये ऐसा है कि जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा 100% ध्यान, मेरा पूरा रिप्लाई आप ही की तरफ होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो वो निश्चित हम कर पाते हैं और कोई व्यक्ति अपना गोल अचीव कर पाता है। जब इससे डिस्ट्रैक्शन होता है तो फिर धीरे धीरे क्या है उसमें, उसके गोल में, व्यक्ति के गोल में, व्यक्ति के लक्ष्य में डिले होने लगता है और वो काफी दूर हो जाता है कुछ समय बाद।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने जाना कि हम अपने को, अपना फोकस अगर हम लूज कर दें, अपने फोकस को, अपने ध्यान को अगर थोड़ा कमजोर कर दें, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देर कर देते हैं और शायद कभी-कभी पहुंचते भी नहीं हैं। क्या बात कही, बहुत बढ़िया।

0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं विजय जी, कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बताइए आपके जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा था।
1: मेरे जीवन का सबसे, देखिए समय तो थोड़ा समय, इसको आप बिल्कुल, आपका प्रश्न पूछने का सही आपका अपना सिस्टम है। समय तो देखिए हमेशा ही हर व्यक्ति का अच्छा ही होता है, बस हमारी सराउंडिंग, हमारी परिस्थिति जो है हमारे अनुकूल या विपरीत हो सकती है। तो मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 9th में था और 12th तक स्कूल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल का जो समय है 4 साल का, और वो जो समय था 1997 से 2001 तक का, उस समय मैं 9th से 12th में था, वो मेरे लिए काफी अच्छा और गोल्डन समय रहा। उस समय जो है मैंने, मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हुआ। उस समय जो शिक्षक मिले, अपने फील्ड के विजडम वाले मिले, और उसी उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का जो सहयोग है, कहेंगे कि मैं जो है अपने कुछ अलग, कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ।
0: बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, बिल्कुल ठीक कहा। वो समय जिस वक्त हम सीख रहे होते हैं, वो समय हमारा सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों इस बात पर गौर कीजिए जो विजय जी ने बताई है कि जिस वक्त हम सीख रहे होते हैं, कुछ लर्न कर रहे होते हैं, वो समय हमारा सबसे अच्छा होता है। मतलब ये हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। उम्र इसमें कहीं आड़े नहीं आती, चाहे आप 50 के हों, 56 के हों, 20 के हों, 78 के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखिए एक नई भाषा, एक नई कला, पढ़िए, कुछ सीखिए। बहुत खूब।

0: चलिए विजय जी आगे बढ़ते हैं। अगेन, क्योंकि आप लाइफ कोच हैं, आप प्रबुद्ध हैं, विचार विमर्श करना जानते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, तो मैं मानता हूं कि आपकी विचार क्षमता जो है वो काफी बड़ी है, ब्रॉड है, विस्तृत है। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कुछ अपने उद्देश्य डिसाइड किए हुए होंगे, अगले एक साल में क्या कुछ हासिल करना चाहेंगे आप?
1: मेरा अगले एक वर्ष की या एक साल का उद्देश्य दिया आप पूछना चाहें तो मैं इसमें पढ़े एक व्यक्ति को उसका जो गोल है या जो उसकी पोटेंशियल है, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को पता नहीं रहता है कि वो क्या कर सकता है, वो हनुमान जी की तरह हो जाता है, उसको नहीं पता कि उसमें कितनी पावर है। तो उसकी इंटरनल पावर को निकाल कर पर डे एक व्यक्ति को उसके गोल तक पहुंचाने में मदद करना कर सकूं और करूं, ऐसी मेरी प्लानिंग है। पर डे मिनिमम एक व्यक्ति को उसके लाइफ गोल तक या उसके पोटेंशियल तक पहुंचाने का मेरा अगले एक वर्ष में टारगेट है और मिनिमम 365 और मैक्सिमम जो भी संभव हो लोगों तक मैं करूंगा। ये मेरा फिलहाल एक साल का मोटिव है।
0: बहुत बढ़िया। इसी बात से संबंधित एक छोटी सी बात पूछूंगा, आप बुरा ना मानिएगा। अगर फर्ज कीजिए 300 लोग या 365 लोग या जितने भी, उनको आप उनके पोटेंशियल तक, उनकी प्रतिभा के चरम सीमा पर या प्रतिभा को

0: आम व्यक्ति अपने ही उलझन के लिए करता है, अपनी ही सुविधाओं के लिए करता है, सिर्फ अपने ही कैलकुलेशन के हिसाब से करता है, उससे बड़ा ये अचीवमेंट होगा।
1: बहुत बढ़िया, क्या बात है। आंतरिक खुशी एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा इनाम होता है जिसके लिए विजय जी ये काम करना चाहेंगे। बहुत खूब।

0: तो विजय जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा एक बिल्कुल सच और कटु सत्य का सवाल। क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, संसार में हैं, सांसारिक प्राणी हैं, इसलिए जीवन में पैसा कितना महत्वपूर्ण है?
1: जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण है फर्स्ट स्टेज में, प्रथम दृष्टया, क्योंकि पैसा जब होता है आपके पास तो आप एक सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। आज का जो समय है वो केवल फिजिकल एक्टिविटी करने से या हमारा श्रम करने से, हमारी ओर से अकेला श्रम आप करने से कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का उत्थान नहीं हो पाता है। उसके लिए फाइनेंस की, पैसे की जरूरत होती है और यही मेरे विचार से सबसे पहले व्यक्ति को इसी पर काम करने की जरूरत है आज के समय में।
0: जी, इस बात से मेरे दिमाग में अचानक से एक बड़ा ही छोटा सा सवाल उठ रहा है कि पैसा जरूरी है
1: जी
0: तो कोई एक मजदूर भी तो खूब मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, खूब मेहनत करता है,
1: जी
0: दिन भर कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता। उतना कह लीजिए, अमीर कहना तो शायद गलत होगा, लेकिन उसके पास उतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी बिल्कुल बेसिक जरूरतें पूरी कर सके। इस बारे में क्या कहेंगे विजय जी आप?
1: देखिए, इस बारे में ऐसा है कि जो मजदूर है, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और अपनी बेसिक जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो कारण होता है वो ये है कि वो आंख बंद करके काम कर रहा है। इसको और हम एलिवेट करें और सरल शब्दों में बोला जाए
0: जी
1: तो वो काम कर रहा है बस, वो सिर्फ काम कर रहा है, मतलब वो उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा है। जैसा अभी कुछ समय, अभी एक दो प्रश्न पहले मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने कहा था, एक आज का दिन खत्म होने से पहले, आज का दिन समाप्त होने से पहले हमें आज का कैलकुलेशन करना चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या बड़ा बिजनेसमैन हो या किसी देश का कोई लीडर भी हो, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। यदि वो ऐसा करेगा तो मजदूर अपनी बेसिक उससे जरूर बाहर निकल पाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं सभी कैटेगरी के लोगों के साथ काम कर रहा हूं और मेरा प्रयास है कि चाहे वो, सिर्फ मेरा प्रयास अमीर या मिडिल क्लास या अपर हैंडेड लोगों के साथ ही नहीं है, मेरा पूरा प्रयास है कि समाज के सभी वर्ग के कैटेगरीज के साथ काम कर पाऊं मैं।
0: दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मजदूर पूरी जिंदगी मजदूरी इसीलिए करता रहता है क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं होती, उसके अंदर इतनी
1: जी
0: अवेयरनेस
1: बिल्कुल
0: नहीं नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो सोच ही नहीं पाता कि साहब मुझे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो मदद करने में बड़ी ही मुश्किल आती होगी, क्योंकि पहली बात तो उन्हें समझाना कि भैया तू शाम को जाकर सोच कि तूने दिन भर में क्या किया। अब वो कहेगा साहब रोटी बना लूं या सोच लूं
1: जी बिल्कुल
0: वो वहां उलझ
1: बिल्कुल
0: जाएगा। चलिए ठीक है, मैं समझ सकता हूं इस बात को, ये आसान काम नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

0: विजय जी, कुछ आध्यात्म की तरफ, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कुछ मानसिक मेंटल पावर की तरफ झुकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आज भी इस संसार में सच्चा प्रेम मौजूद है?
1: देखिए, निश्चित रूप से ये जो संसार है, चाहे समय आज का हो या आज से 100 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, इस संसार में सच्चा प्रेम उपलब्ध पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसका रेशो जो है कम ज्यादा हो सकता है, इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहती है, क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम भी एक एनर्जी है, प्रेम भी एक ऊर्जा है। और वैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड और जनरेट, तो वो अवेलेबल हमेशा से थी। बस ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो उसको उपयोग कैसे कर पाता है, अपनी लाइफ में उतार कैसे पाता
0: दरअसल ये चीज मैंने इसलिए पूछी विजय जी, आजकल
1: है। जी
0: चारों तरफ सड़क पर चलते हुए एक दूसरे के प्रति एनिमोसिटी, एक दूसरे के प्रति गुस्सा, एक दूसरे के प्रति घृणा, ये ज्यादा दिखाई देती है। क्योंकि बिल्कुल साधारण एग्जाम्पल लें, किसी गाड़ी के बगल में से गुजर रहे हैं, या किसी गाड़ी वाले ने हमें पीछे से हॉर्न दे दे के आगे निकला तो वो गालियां बकता हुआ आगे निकलता है, या उसकी गाड़ी को
1: जी
0: छू भी जाए तो, जबकि उसने इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस कराया ही इसीलिए जाता है कि ठीक करा लो, लेकिन आगे निकल के वो भयंकर भयंकर गालियां देना शुरू करता है, कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू कर देता है। फिर इसके बाद घरों में, परिवारों में परिवार टूट रहे हैं। पहले सब सामूहिक परिवार में रहा करते थे, कंबाइंड फैमिली
1: जी
0: होती थी। आज की डेट में बच्चे बच्चियां अपनी शादी हुई और जाके बैंगलोर, हैदराबाद और अकेले अकेले रहने लगे हैं, जिनको न्यूक्लियर फैमिलीज कहा जाता है। कहाँ रह गया प्रेम? कहाँ ढूंढे उस प्रेम को जो सच्चा है और एक दूसरे की इज्जत करता है? कहाँ दिखता नहीं है, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा आपसे।
1: जी देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, और ये बिल्कुल हमें हमारे सामने सुबह से रात शाम तक चारों तरफ दिखाई देता है। उसका रीजन जो है, असल में व्यक्ति की लाइफ के जो है चार पार्ट होते हैं, चार भाग होते हैं। पहला ह्यूमन असेट हम बोल सकते हैं उनको, ह्यूमन असेट है, इंटेलेक्चुअल असेट है, फाइनेंशियल और सोशल असेट है। तो ये चारों पार्ट पर व्यक्ति को क्या काम करने की जरूरत होती है। होता क्या है कि हम या तो ह्यूमन एसेट अपने आप पे काम कर लेते हैं, और इंटेलेक्चुअल हमारा नॉलेज, हमारा विजडम, उस पे काम नहीं कर पाते, या फिर हम फाइनेंशियल ही एसेट पे सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, पूरा जीवन काम करते रहते हैं। सोशल और स्पिरिचुअल जो एसेट है वो कहीं रह जाता है। तो इन चारों का समावेश ना होने की वजह से ये चीजें होती हैं, और उसी की कमी को पूरा करने के लिए मेरा एक स्लोगन है, और मैं सबसे कहता हूं, और बिल्कुल मेरा मानना है स्ट्रांगली कि आपको एक लाइफ कोच की जरूरत है। वो आपको ये चीजें बताएगा, या आपको कोच की जरूरत है, आपको मार्गदर्शक की जरूरत है।
0: उसी केस में तो साहू साहब, ये जो जितने भी हमारे देश में, खास करके हमारे देश में तमाम तमाम बाबा लोग मौजूद हैं ना, वो गुरु ही तो सारे बन के बैठे हैं। फिर मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि फिर लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे कि आपने हमारे गुरु का नाम कैसे ले दिया। लेकिन सब लोगों को यही लगता है कि उनके गुरु जो सिखा रहे हैं वही उत्तम है। लेकिन क्या वो गुरु लाइफ कोच हैं? क्या वो गुरु सारे चारों जो आपने करेक्टरिस्टिक्स बताए उनमें वो सिखा रहे हैं क्या? और चक्कर ये भी है ना कि दुनिया इतनी बड़ी है साहू साहब, अब व्यक्ति पहले तो ये सोचे कि हमें एक लाइफ कोच चाहिए। जो हाँ, उसमें ऐसा भी हो जाता है, लोग ये कहते हैं अच्छा अब आप हमें सिखाओगे हमारी जिंदगी कैसे जीनी है और लड़ने को आ जाएंगे कि अच्छा अच्छा अब आप हमें बताओगे। ये भी एक बड़ा भारी भरकम काम है कि साहब
1: वो
0: लाइए,
1: कहेंगे कि आप रेगुलेटर करना है
0: हाँ
1: हमारे।
0: आप हमारी जिंदगी चलाना चाहते हो मतलब, है ना? अब आप ये कहोगे कि ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो करो। बड़ी मजेदार बात है कि वो उन बाबाओं की बात मान लेंगे लेकिन लाइफ कोच के पास
1: जी
0: नहीं आएंगे। बहुत बहुत मुश्किल काम है, मैं मानता हूं साहब। तो दोस्तों, आपने सुना, चलिए सोच विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं।

0: आगे बढ़ते हुए विजय जी, मैं पूछना चाहूंगा, आप तो लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, आपने मुझे बताया कि एक साल में आपका टारगेट भी है कि आप 365 नहीं तो 300 जो भी है, एक दिन में एक व्यक्ति की जीवन को कुछ तो ठीक करने की कोशिश का आपका टारगेट है। तो जब लोगों के साथ इतना इंटरैक्शन होता है, बातचीत होती है, व्यवहार होता है, तो उन लोगों की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत परेशान और निराश करके चली जाती है?
1: सर, इसमें सबसे बड़ी जो बात है जो ज्यादातर के सामने आती है वो है रियलाइजेशन। व्यक्ति को समस्या का पता है, व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन, सूचना बहुत है, जानकारी बहुत है, लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं है। मैं उदाहरण के लिए यदि बात करूं बोलूं तो क्या है कि व्यक्ति जानता है कि ये अभी कुछ देर पहले आपने इंश्योरेंस गाड़ी वाली बात की, मैं उसी से रिलेट करता हूँ। व्यक्ति जानता है कि वो इंश्योरेंस हमें अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड करने, लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी से उभरने का काम करता है, फिर भी जो ज्यादातर जो छोटे वाहन वाले लोग हैं, छोटे व्हीकल्स टू व्हीलर वाले हैं या जो भी हैं, बड़े वाले भी कभी कभी अवॉइड करते हैं, मुझसे कहते हैं, ये सामने आता है कि हमारी गाड़ी तो बस यहाँ से चौराहे तक जाती है, बस। इसका मतलब है वो समस्या का रियलाइजेशन नहीं है। जैसे अभी लोग गाड़ियों रोड पर झगड़ने लगते हैं, उनको पता ही नहीं था कि वो किस काम के लिए जा रहे हैं। वो झगड़ते तब हैं, उनमें से कोई एक मीटिंग के लिए जा रहा होता है, हो सकता है इवन कोई एक इंटरव्यू के लिए जा रहा होगा जिसके जिसके पूरे फ्यूचर के कैरियर पर उस पर डिपेंड करता है, पर वो सब भूल के उस समय वहीं इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका सीधा जो रीजन है वो है रियलाइजेशन, और उसके लिए एक वाक्य है, रियलाइज फास्ट रिएक्ट स्लो।
0: दोस्तों आपने सुना, एक वाक्य है रियलाइज फास्ट रिएक्ट स्लो, मतलब महसूस कीजिए, समझिए, एकदम से जवाब देने की या रिएक्ट करने की या प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा रुकिए, सोचिए। आज की डेट में शायद हमें ऐसा लगने लगा है हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम है, तो इसलिए हम रियलाइज करते नहीं और प्रतिक्रिया पहले दे देते हैं कि चलो यार निपटाओ, रसीद काटो और आगे बढ़ो। सोचने की बात यह है कि हमारे पास वक्त कम कैसे हो गया, वही 24 घंटे आज से करोड़ों साल पहले से आ रहे हैं, अभी हमारी जिंदगी में ये 24 घंटे घट गए हैं क्या? इस बात को तो क्या रियलाइजेशन हो नहीं पा रहा है। चलिए, विचार करने वाली बात है। विजय जी हमें जो भी बता रहे हैं उसमें विचार बहुत ज्यादा जरूरी है।

0: विजय भाई, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में बात करते हैं। फर्ज कीजिए कोई हमारे ही समाज में से, या मैं कहूं मैं 40 साल की उम्र में, नहीं मेरे ऊपर ये ठीक नहीं बैठेगा साहब, मेरी उम्र 40 से तो ऊपर हो ही चुकी है लेकिन मैं आजकल के बच्चों के बारे में बात करूंगा जो अभी पढ़ रहे हैं या जॉब में आने वाले हैं। अगर वो आपकी बात सुनकर ऐसा सोचें कि चलिए 40 की उम्र में मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, यानी कि 40 उम्र तक पहुंचने के बाद मैं कोई काम ना करूं, बस घर बैठ जाऊं, तो कैसी प्लानिंग करनी चाहिए उस बच्चे को, क्या करे वो?
1: देखिए, इसमें जो जो बच्चे की या स्टूडेंट की या यंगस्टर की आपने बात की, तो स्कूलिंग के बाद 18 से 27 साल का जो एज है वो लर्निंग फेस होता है। उस समय व्यक्ति को अलग अलग तरह की लर्निंग, अलग अलग तरह की स्किल्स और अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम करने की जरूरत होती है। खासकर स्किल्स में उसको पारंगत होने की जरूरत होती है। और व्यक्ति 18 से 27 तक यदि अपनी अलग अलग स्किल्स अपने पास लाता है, जैसे मैं बात करूं कि सेलिंग एक स्किल है वो अपने में लाता है, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करता है, वह टेक्नोलॉजी पर काम करता है, वह रिलेशन मैनेजमेंट पर काम करता है, वह काम करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करता है, इस तरह की स्किल्स पर यदि वो काम करता है 18 से 27 तक, तो उसके पास क्या है, फाइनेंस को अट्रैक्ट करने की, मनी को आकर्षित करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। और इसके बाद वो निश्चित रूप से 40 की उम्र तक अगले 10-12 साल में उसको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है, क्योंकि फिर वो जो अर्न करेगा 27 के बाद अर्निंग का जो फेस आता है, बाकी कोई व्यक्ति 20-21 साल में भी अर्निंग शुरू कर सकता है, लर्निंग फेस के साथ भी कर सकता है, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि इस एज में, खासकर 18 से 27 का जो एज बैंड है, मैं उस पर बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं कि वहां से आप कितने जल्दी रिटायर होंगे वो वहां से स्टार्ट होता है। तो उस पर यदि उसने अच्छे से काम कर लिया, पूरी मेहनत और लगन से काम कर लिया, तो वह आसानी से 40 साल की उम्र तक रिटायर हो सकता है, अपनी सारी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकता है और अपने परिवार के लिए भी विल लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकता है, क्योंकि उस समय उसके पास जो वर्क है, जो 27 के बाद का जो स्टार्टिंग पीरियड रहेगा, उसके पास लायबिलिटियां व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं। तो यदि वो 18 से 27 का, मैं फिर फोकस करूंगा, ये जो एज है वो मैन है, इस पे स्किल्स यदि वो सीख लेगा, उसने अच्छी स्किल सीख ली, तो वो यदि जॉब की बात करें, तो यदि कोई कंपनी वो 1 लाख रुपए मांगता है पैकेज मंथली, यदि बात करूं, या 2 लाख मांगता है, जो भी मांगता है, तो ऐसे व्यक्ति को कंपनी उसकी अपेक्षा से ज्यादा देगी, और जब अपेक्षा से ज्यादा देगी तो वो निश्चित रूप से अपनी रिटायरमेंट में, इन्वेस्टमेंट में जो है काम आएगा, और वो अपनी जो 40 साल उसने टारगेट रखा है या कोई भी साल रखा है पहले भी, वो फाइनेंशियल फ्री हो सकता है।
0: बहुत बढ़िया साहू साहब, बहुत बढ़िया। दोस्तों, किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है उसके बारे में विजय जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं। विजय जी, मैं दरअसल इस सवाल से ही संबंधित थोड़ा सा और आपसे गुजारिश करूंगा। हमें थोड़ा गणित बताइए इसकी, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, कितना पैसा हमारे पास बैंक में पड़ा हो, कितना पैसा हमारे पास म्यूचुअल फंड में पड़ा हो, कितना पैसा जो हमें फाइनेंशियली फ्री कर दे। और आपने 18 से 27 साल की उम्र की बात करी, बच्चा जो है वो 18 से 27 यानी कि 8 साल, 2 साल इधर और 7 साल इधर, 9 साल, 9 साल जो है वो बच्चा स्किल डेवलपमेंट करता रहे, उसके बाद वो काम करे 27 से 40, मतलब प्रैक्टिकली 13 साल बचे, 13 साल में वो स्किल डेवलपमेंट पे काम करके आगे बढ़े और 40 पर वो रिटायर हो जाए या फाइनेंशियली फ्री हो जाए, तो इसकी गणित क्या है, फिगर्स क्या हैं? 17 की उम्र में मान लीजिए शुरू करे, सॉरी 18 की उम्र में शुरू करे, तो वो 27 की उम्र में आकर कितनी सैलरी, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 40 की उम्र पर कितना पैसा, गणित गणित बताइए ना।
1: बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट ज्यादा देना पड़ेगा।
0: जी
1: देखिए, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले फाइनेंशियल फ्री होने के लिए हमारी, जो जैसे मैं लाइबिलिटी की मैंने बात की सबसे पहले, कि हमारी जो बेसिक लाइबिलिटी है वो ये है कि हम जिस फेस में भी, जिस एज में भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 का है और उस समय वो उसकी अर्निंग जो है 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो सबसे पहले उसको उसकी अर्निंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसकी मेडिकल लाइबिलिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी और उसकी फैमिली को। यदि उसने ये 2 कर दिया तो उसके जो पैसे हैं, जो भी अर्निंग है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी कभी भी, कभी भी बैक में नहीं जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी ज्यादातर मेडिकल ही आती है। इमरजेंसी का जो शब्द है, इमरजेंसी आपने सुना होगा, घर में इमरजेंसी आई, घर में इमरजेंसी जनरली मेडिकल ही आती है, बाकी कोई भी इमरजेंसी होती नहीं है, व्यक्ति सिर्फ काम को ही इमरजेंसी बनाता है, तो इमरजेंसी आती है मेडिकल के रूप में। तो पहले उसको अपनी अर्निंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि वो इंश्योरेंस के थ्रू ही कर पाएगा, चाहे वो टर्म पॉलिसी के थ्रू ही कर ले कम प्रीमियम में, और मेडिकल, ये 2 लाइबिलिटी कवर कर लेगा तो उसकी सेविंग बच पाएगी। फिर देन सेविंग वाले पार्ट में वो जब ही बढ़ सकता है जब उसकी मेडिकल ही और उसकी जो जो इनकम है, जो आय है, वो प्रोटेक्ट हो जाए। दूसरा स्टेज होता है कि एक निश्चित और रिस्क फ्री सेविंग होती है, जिसमें 10 से 15% जो है रिटर्न की अपेक्षा की जाती है, जो कि SIP म्यूचुअल फंड के थ्रू हम ला सकते हैं और मिलता भी है। इसके बाद जो है फिर वो इसमें कर सकता है, इसके बाद वो रियल इस्टेट में भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको या तो उसकी तभी हो पाएगा जब वो अर्निंग का स्टार्टिंग एज में मैक्सिमम पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट में डाले, या यूं कहें कि सेव करके कंपाउंडिंग में डाले, तो वो होगा निश्चित रूप से। पर ये डिपेंड इंडिविजुअली करेगा कि व्यक्ति व्यक्ति पर वो किस तरह से लेता है।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा विजय जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, एक गाइडलाइन हमें क्लियर कट मिल रही है। विचार कीजिए जिंदगी को किस तरीके से प्यारे ढंग से जिया जाए, किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किया जाए। आप अपना टारगेट खुद डिसाइड कीजिए, 40 साल की उम्र में, 45, 60, 75, किस साल की उम्र में आप रिटायर होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे हमने बातें की, बहुत सारी चीजें आज हमें सीखने को मिली, सोचने पर मजबूर किया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो हम आपका नंबर भी दे सकते हैं, या फिर आपकी मेल आईडी हम दे सकते हैं, जिससे लोग आपसे
1: जी
0: संपर्क
1: बिल्कुल
0: करें।
1: दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी कि आपके माध्यम से एक प्रैक्टिकल विचार लोगों के सामने पहुंचने का मौका मिला। निश्चित रूप से ये फ्रूटफुल रहेगा। धन्यवाद
0: चलिए, चलते चलते विजय जी, बस एक छोटा सा सवाल जो मुझे बड़ा
1: जी।
0: पसंद है, मैं उससे, मुझे दरअसल बहुत सोचने पर कुछ ऐसा सब्सटेंस मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है कि मुझे बड़ा मजा आता है। फर्ज कीजिए, आपको कोई एक आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने वाला जिन्न, परी,
1: जी
0: देवता कोई मिल जाए और आपसे कहे कि विजय जी, अपने लिए, संसार के लिए नहीं, अपने लिए 3 इच्छाएं मांग लो, पूरी कर दूंगा, तो 3 इच्छाएं क्या मांगेंगे आप? प्लीज गौर कीजिएगा, वो देवता जो है, संसार के लिए अगर आपने कुछ मांगा तो नहीं देगा, आपके अपने लिए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस देवता से मैं जो पहली चीज मांगूंगा वो ये मांगूंगा कि अभी मेरी एज 42 है और अगले 58 साल, 58 ईयर यानी 100 ईयर की एज तक मुझे स्वस्थ रखे। पहली विश मैं उससे ये मांगूंगा।
0: बहुत बढ़िया।
1: दूसरी विश की बात करें तो मैं उससे मांगूंगा कि मुझे ऐसा कॉपरेशन या ऐसा परिस्थिति मिले कि मैं इस पूरी दुनिया को पर्सनली या घूमकर रियलाइज कर सकूं, इस दुनिया की, इस नेचर की सुंदरता को रियलाइज कर सकूं, ये मैं उससे मांगूंगा। और तीसरी और अंतिम विश की मैं बात करूं तो मैं अपना अंतिम वक्त जो है एक अपने खेत पर बड़े सुकून से उस पर बिताना चाहूंगा, और मैं कभी रिटायर होने की आशा नहीं रखूंगा, मैं मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जब तक हूं काम करता रहूं।
0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना विजय जी की तीन इच्छाएं, बाकी बातें भी हमने विजय जी की सुनी। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिए। दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायणी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में यह 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है, फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इस खोने लगे तो पूजा पाठ कर लेना। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।
3: What?

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों, ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से, बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत

नहीं हुई उस बच्चे की। इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी ये है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। ये पेशे खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी माँ तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायर हैं उनका नाम है संदीप बहल। बाकी की बातचीत हम संदीप जी से ही करेंगे और जानेंगे उनके बारे में और उनकी गजलें सुनेंगे। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। संदीप, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना परिचय दें जिससे श्रोता आपको जान सके।
1: मेरा नाम संदीप बहल है, मैं कानपुर से हूँ और संदीप के उपनाम से गजलें लिखता हूँ। अभी हाल ही में मेरी किताब सिर्फ मोहब्बत प्रकाशित हुई है और इसी बस इतना ही मेरा परिचय है। और क्योंकि टाइम की कमी के लिए हिसाब से बोला तो बहुत कुछ जा सकता, लेकिन संक्षेप में यही है। बाकी एलआईसी में मैं जॉब करता हूँ और कानपुर को बिलोंग करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल पढ़ें।
1: पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं ये मौका देने के लिए। मैं अपनी पहली गजल के मैं कुछ चार पांच मिसरे ही पढ़ूंगा बस, हर एक जो भी होगी पहले ही है मेरी जो पसंदीदा।
0: इरशाद।
1: लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। उसकी चाहत की बेड़ियों में कैद है मेरी जिंदगी, उसकी चाहत की बेड़ियों में कैद है मेरी जिंदगी, लाख करूं कोशिश लेकिन बगावत नहीं होती।
0: क्या बात।
1: लाख करूं कोशिश लेकिन बगावत नहीं होती। लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। इतनी मासूमियत भरा वो इनकार करना उनका, इतनी मासूमियत भरा वो इनकार करना उनका, हरेक को नसीब ऐसी नजाकत नहीं होती, हरेक को नसीब ऐसी नजाकत नहीं होती, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। उसकी हकीकत से यहां सारा जहां वाकिफ है, उसकी हकीकत से यहां सारा जहां वाकिफ है, पर उसे बेवफा कहने की हिमाकत नहीं होती, पर उसे बेवफा कहने की हिमाकत नहीं होती। लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत खूब,
1: धन्यवाद।
0: अपने दिल के जज्बात आपने लफ्जों में पिरो कर जो पेश किया है वो काबिले तारीफ है भाई, बहुत बहुत खूब,
1: धन्यवाद।
0: तो संदीप भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
1: मेरे एक, वैसे तो बहुत सारे गजल गायक मेरे हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, बट एक जो दो भाई हैं जो मिलके गाते हैं, अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन
0: जी,
1: उनकी एक गजल है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, कौन याद करता है हिचकियां समझती हैं। बेहद उम्दा गजल है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, कौन याद करता है हिचकियां समझती हैं।
0: तो यही गजल हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: जी बिल्कुल, अगर मेरी पसंद से आप सुनवाएं तो ये मुझे बहुत पसंद है।
0: आइए दोस्तों सुनते हैं यही प्यारी सी गजल संदीप जी की फरमाइश पर।

0: संदीप भाई, आपसे छोटा सा ही सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी सबसे फेवरेट गजल कौन सी है और क्यों, या कोई पसंदीदा गजल हो जो आपको पसंद आती
1: है? जगजीत सिंह की गाई हुई गजल अक्सर गुनगुनाने का मन करता और मुझे बेहद पसंद है। हालांकि गुलाम अली ने भी गाई है और लोगों ने भी गाई है, बट जगजीत की आवाज में ज्यादा सुना मैंने।
0: जी,
1: कल 14वीं की रात थी, बर रहा तर चर्चा तेरा।
0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी सी गजल।
1: हाँ, मुझे बेहद पसंद है ये, और मुझे जब मौका लगता है मुझे सुन के बड़ी ताजगी महसूस होती है।
0: क्या बात है। तो संदीप भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल या नज्म या अपना कलाम हमें और हमारे सुनने वालों को सुनाएं।
1: मेरी अगली जो गजल मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, उसमें मैंने इन बातों को लिखने की कोशिश की है कि जो अक्सर हम लोग अपनी जिंदगी में कई किरदार निभाते हैं, कहीं पिता का, कहीं पुत्र का, कहीं एम्प्लॉय का, कहीं एम्प्लॉयर का, कहीं रिलेशन में, तमाम तरीके के रोल्स दिन भर प्ले करते हैं। तो उसी में इतना आदमी खो जाता है कि अपने खुद के लिए समय नहीं मिलता।
0: जी,
1: तो जब कभी मौका लगता है लिखने का, तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी जिंदगी भर रही, उसी पे मैंने लिखा था। मेरे हिस्से के लम्हे तो मेरे पास ही रहने दो, मेरे हिस्से के लम्हे तो मेरे पास ही रहने दो, किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो।
0: क्या बात है।
1: किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो, वक्त को वक्त देने का सलीका भी सीखो।
0: वाह,
1: वक्त वक्त को वक्त देने का सलीका भी सीखो, कुछ तो मेरे यार खुदा के भरोसे भी रहने दो।
0: बहुत खूब।
1: तो मेरे यार खुदा के भरोसे भी रहने दो, बदलते हालात बहुत कुछ बदलना चाहेंगे, बदलते हालात बहुत कुछ बदलना चाहेंगे, रोको मत तुम इन्हें अपना काम करने दो, रोको मत तुम इन्हें अपना काम करने दो, किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो, किस्मत के किस्से सुनाकर कुछ ना सोचो।
0: जी,
1: ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, अक्सर लोग करते हैं, मैंने भी किया अपनी जिंदगी में
0: जी,
1: बट अंत में जो पाया वो मैं लिख रहा हूं कि किस्मत के किस्से सुनाकर कुछ ना सोचो, तकदीर की स्याही को तुम बस गहरा रहने दो।
0: क्या बात है।
1: तकदीर की स्याही को तुम बस गहरा रहने दो, मेरे हिस्से के लम्हे तो मेरे पास ही रहने दो, किरदारों के लिबास कभी तो दूर रहने दो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: धन्यवाद,
0: बहुत खूब।
1: मैं जोड़ पा रहा हूँ, आपको पसंद आ रही है मेरी खुशकिस्मती।
0: अरे साहब, नहीं बिल्कुल, अल्फाजों में सच्चाई झलक रही है, अल्फाजों में दिल का दर्द झलक रहा है, दिल की खुशी झलक रही है, दिल के जज्बात झलक रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि अगर आपके अल्फाज या आपके संदेश हमारे दिल तक पहुंचे तो आह या वाह तो निकलेगी ही।
1: सही कहा, सही बात कही, आह या वाह तो निकलेगी,
0: निकलेगी ही साहब, तो वो आपने आ सुनी की वाह ये आपके ऊपर है। तो संदीप भाई, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं।
1: एक हम सब लोगों की पसंदीदा गजल रही है, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं मेरी जनरेशन को, जब मैं यंग था तब लोगों को पसंद थी, आज मेरा बेटा भी इस गजल को सुनता है और लोग भी सुनते हैं, तो ये अल्फाजों में ही आदमी अमर हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: इस तरीके से अमर हुआ है गाने वाले ने, फरीदा खानम जी की गजल है कि आज जाने की
0: जिद ना करो। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन,
1: बेहद पसंद है, और बहुत वर्जन इसके गाए गए लेकिन फरीदा खानम जैसा मुझे कोई नहीं लगा, सॉरी टू से, बट उनका अंदाज बयान कुछ अलग था, जो दिल को उन्होंने छुआ है और जो इसके लिरिक्स में कमाल है वो अंदर तक छूता है।
0: बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, फरीदा खानम की आवाज में संदीप बहल साहब की फरमाइश, ये गजल सुनते हैं।
2: आज जाने

0: 나 해로워.
1: संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि यूं तो पूरी जिंदगी आपके सामने है जो आपने जी है, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला हो आपकी पूरी जिंदगी में जिस जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा हो कि वैसा इंटरेस्टिंग पर्सन फिर कभी नहीं मिला?
2: बड़ा मुश्किल है इतनी लंबी लिस्ट में से किसी एक का नाम लेना।
1: जी हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्या होता है कभी गाये बगाये अचानक से दिमाग में कौंध जाता है कि यार उस शख्स से मुलाकात हुई थी और वैसा तो फिर कभी महसूस नहीं हुआ।
2: मेरे जो मुझ में कमी है वो जब मुझे किसी दूसरे के अंदर खासियत दिखती है कि इसने इस सर्कमस्टांसेस को कैसे हैंडल किया और ये कितना खुश है, तो मैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। मेरे एक कलीग थे, रिटायर हो चुके हैं, वो मेरे ऑफिसर थे, मेरे बॉस थे, बट उनसे मैंने लाइफ के बारे में बहुत सीखा। जिंदगी में मुस्कुराना कैसे है, जिंदगी को कैसे लाइटली लेना है, जिंदगी को जीना कैसे, हर परिस्थिति में कोई मान के कि ये उसकी रजा है उसी में राजी रहना, ये जो कला है ना ये मुझे सीखने में बहुत देर लगी, अभी भी शायद पूरी तरह नहीं सीख पाया हूं। बट वो व्यक्ति जो है थे मेरी जिंदगी में वो परिपक्व थे बिल्कुल
1: जी।
2: वो कहते थे वो लेट गो वाली जो उनकी एक स्टाइल थी ना, कि वो कहते थे कि अगर परिस्थितियां तुम्हारे वश में नहीं है तो शांत हो जाओ, और शांत होना ही बहुत मुश्किल होता उस वक्त उस कठिन दौर में खुद को कंट्रोल कर पाना। बट मैंने प्रयास किया जब भी जिंदगी में उनको याद करके और उस वक्त को निकालने की कोशिश की, तो जब वो वक्त बीत गया और मैं सफल हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब भी वो खुशी महसूस हुई तो उनकी याद जरूर आती।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: मैं हमेशा उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने गाए बगाए मुझे बहुत सी बातें बताई, उनका ये एक पहलू मैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुद इतने गम थे कि कोई व्यक्ति उनसे 1% भी उनके बारे में जान नहीं सकता।
1: ओहो,
2: कोई भाप ना सका घाव कैसा था, मेरा रख रखाव ही ऐसा था।
1: वाह क्या बात है।
2: क्या बात ये है? जो बात है ना उन पे बिल्कुल फिट बैठती है।
1: बहुत खूब।
2: और घावों का ऐसा रख रखाव रखने की कोशिश मेरी जारी है, मैं भी करता हूँ, बट अभी उतना सफल नहीं हो पाया
1: जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुनाएं हमें।
2: मैं इसी से जो बात अभी आपने छेड़ी उससे जुड़ी हुई गजल ही मेरे जहन में आ गई है
1: जी,
2: और वो मैं आपको सुनाता हूं। अपने हाथों से फूलों को यूं मसलता क्यों है
1: जी,
2: अपने हाथों से फूलों को यूं मसलता क्यों है, क्या वजह है खुशबू से इतना जलता क्यों है।
1: ओहो,
2: क्या वजह है खुशबू से इतना जलता क्यों, अभी भी तेरी पहुंच से बाहर गया नहीं हूं मैं
1: जी,
2: अभी भी तेरी पहुंच से बाहर गया नहीं हूं मैं, पाने की कोशिश तो कर इतना डरता क्यों है।
1: क्या बात है,
2: पाने की कोशिश तो कर इतना डरता क्यों है, वही बात अलग अलग तरीकों से कही हमने, वही बात अलग अलग तरीकों से कही हमने, लेकिन अब तक मुझे वो कायर समझता क्यों है।
1: क्या बात है,
2: अब तक मुझे वो कायर समझता क्यों है। दूरी इतनी भी नहीं कि नजदीक ना आ सको, दूरी इतनी भी नहीं कि नजदीक ना आ सको, लोगों का तंज तुझे इस कदर अखरता क्यों है।
1: क्या बात है,
2: लोगों का तंज तुझे इस कदर अखरता क्यों है, अपने हाथों से फूलों को यूं मसलता क्यों है, क्या वजह है खुशबू से इतना जलता क्यों।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: इसका आखिरी मिसरा मेरे दिल से निकला हुआ है कि खुद खड़े होना भी जिनके लिए मुश्किल हो
1: जी।
2: समीर जी, मैं चाहूंगा इसको आप दिल से सुने और ये दिल तक पहुंचेगा, मेरा वादा है
1: जी। इरशाद,
2: खुद खड़े होना भी जिनके लिए मुश्किल हो, उनसे मत पूछना कि कोई और चलता क्यों।
1: अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है।
2: उनसे मत पूछना कि कोई और चलता क्यों।
1: ओहो।
2: अपने हाथों को फूलों को यूं मसलता क्यों है, क्या वजह है खुशबू से इतना जलता।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जोरदार। क्या कहा है साहब, क्या कहा है, वाह।
2: सुनके लगा,
1: सुन के लुत्फ आ गया साहब, सुन के लुत्फ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं हमें, जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
2: हुजूर, फिर वही हम सबके फेवरेट मेहंदी हसन साहब
1: जी,
2: और वो फेमस गजल रंजिश ही सही दिली दुखाने के लिए।
1: वाह जी वाह,
2: खफा है तो जमाने के लिए। बेहतरीन गजल, बेहतरीन, बेहद उमदा गजल, बेहद उमदा अशार इसके, और उतनी ही बखूबी इसको निभाया उन्होंने अपनी आवाज।
1: बेहतरीन,
2: दुखाने के लिए।
1: आए दोस्तों, सुनते हैं मेहंदी हसन साहब की आवाज में ये प्यारी सी गजल संदीप जी की फरमाइश पर।

0: तो संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी गजलों में, आपके लफ्जों में काफी दर्द सुनाई देता है, ऐसा कुछ अगर आप इजाजत दे तो पूछूं कि क्या कुछ ऐसा गुजर गया जिंदगी में जिसने आपको मजबूर किया और आपके लफ्जों में इतना दर्द उभर आया जो आपने लिखा?
1: निश्चित रूप से भाई, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में ऐसा हुआ ही होता है, क्योंकि कलम कोई यूं ही नहीं उठाता
0: जी।
1: बस ये होता है कि लिखने वाला जरूरी नहीं कि उन हालातों से गुजरा हो। तो मैंने अपनी किताब में ये बात लिखी भी है कि ये जरूरी नहीं कि आपकी हर रचना आपकी आप बीती हो,
0: जी,
1: बल्कि ये वो शक्ति हो सकती है जो एहसासों को सिर्फ महसूस नहीं करती बल्कि जीती है।
0: क्या बात है।
1: और ईश्वर की कृपा से शब्दों को मोती की तरह जज्बात के धागों में पिरोकर गजल या कविता रूपी माला का रूप देती है।
0: क्या बात है। ओहो,
1: वीर रस का हर कवि सेना में नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा।
1: इसी तरह हास्य रस का हर कवि आवश्यक रूप से निजी जिंदगी में सुखी या संतुष्ट नहीं होता।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: ठीक इसी तरह से श्रृंगार रस का हर कवि प्रेम में दुखी नहीं होता, बल्कि शायद उसकी महसूस करने की शक्ति दूसरों से ज्यादा होती है।
0: कुछ ज्यादा ही होती है। सही कहा आपने, कुछ ज्यादा ही होती है। वो उन लोगों के साथ एम्पथाइज कर पाता है, उनके दुख को या उनके गम को या उनके जज्बातों को समझ पाता है, इस वजह से वो ये सब कुछ लिख पाता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा।
1: बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया। एग्जैक्टली एम्पैथी ही होती है ये, जो आपको जोड़ती है लोगों से।
0: जी,
1: जिससे आप उसको महसूस कर पाते हो, उस जगह खुद को पा पाते हो, और फिर जो एहसास उभरते हैं उनको आप अशारों का रूप देते हो।
0: जी।

0: सही कहा आपने, सही कहा, बहुत खूब। तो संदीप भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी एक गजल और सुनाए हमें।
1: मैं, अगर आप इजाजत दें तो कुछ शेर अपने सुनाना चाहूंगा। अगर
0: इरशाद, इरशाद, इरशाद। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर।
1: कुछ अच्छे शेर हैं, चंद शेर हैं, मतलब हैं तो बहुत, बस कुछ दिल के करीब होते हैं, जो चाहता है इंसान के वो लोगों के साथ। लिखने वाला चाहता है कि भाई जो बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना, तो माँ बाप हमेशा उसको दूसरों के सामने खड़ा करते हैं ताकि उसकी तारीफ हो।
0: जी जी जी,
1: पसंदीदा शेर है मेरे
0: जी, इरशाद।
1: तेरी यादों की दराजों में जाले नहीं लगते, तेरी यादों की दराजों में जाले नहीं लगते, तेरे खतों के हर्फ मुझे काले नहीं लगते।
0: ओहो,
1: तेरे खतों के हर्फ मुझे काले नहीं लगते। और आप देखिए, एक लिखने वाला इंसान बीसियों साल लिखता रहता है। लोग पूछते हैं कि कब खत्म होगा ये सिलसिला, कब तक चलेगा, कितनी बार और क्या क्या चीजें, कितनी कठिनाइयां आती हैं, ये आसान नहीं है उसको मीटर में रखना। तो मैंने उस दिक्कत पे भी एक चीज लिखी थी, उसका पहला मिसरा कुछ इस तरह है कि कभी काफिया पकड़ता हूं तो रदीफ रूठ जाता है।
0: ओहो, क्या बात है।
1: कभी काफिया पकड़ता हूं तो रदीफ रूठ जाता है, तुझ पर जितना लिखूं कुछ ना कुछ छूट जाता,
0: कुछ ना कुछ छूट जाता, क्या बात है।
1: तुझ पर जितना लिखूं कुछ ना कुछ छूट जाता है।
0: वाह।
1: तो ये रहता फिर वो जो छूट जाता है, वो नए सिलसिले, नई गजल, नए शेरों के रूप में आप सबके सामने आता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूब।
1: और कोई किस कदर किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है या उसकी लाइफ में वो इम्पैक्ट डालता है कि आप उसके मोहजाल, माया जाल, आप कुछ भी कह सकते हो, कि उससे बाहर नहीं आता
0: जी।
1: और उसका सही होना और गलत होना इन नतीजों से ऊपर होता है वो इंसान। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था, मुझे बेहद पसंद है, कि मेरी जिंदगी का बस इतना सा फलसफा है
0: जी,
1: मेरी जिंदगी का बस इतना सा फलसफा है, ये दुनिया एक दो बार और तू कई दफा है।
0: ओहो, अच्छा जी।
1: ये दुनिया एक दो बार और तू कई दफा है,
0: तू कई दफा
1: मेरी जिंदगी का बस इतना सा फलसफा है, ये दुनिया एक दो बार और तू कई दफा है।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत बहुत खूब, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। अगेन ये छोटे छोटे शेर बड़े बड़े धमाके करने वाली चीजें लग रहे हैं साहब। लेकिन हाँ, इनकी अपनी जगह होती है।
1: कर रहा हूँ आपके जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनने वालों को, के दिलों के तार को छू सकूं, कुछ ऐसा कह पाऊं कि जो उन्हें याद रहे या उन्हें दोबारा सुनने के लिए प्रेरित करे, बस यही कोशिश है।
0: बेहतरीन, बेहतरीन ये जरूर होगा, क्योंकि सुनने वालों को भी, सुनने वालों में बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते ही हैं जो दिलों को छू देने वाले अशआर और दिलों को छू देने वाले शेर भी बहुत शिद्दत से महसूस कर लेते हैं। तो ऐसा होगा और जरूर होगा। तो चलते चलते संदीप भाई, एक अपने गजल गायक की कोई पसंदीदा गजल सुनवाते चलिए।
1: एक नज्म है जगजीत सिंह ने गाई थी, तेरे खुशबू से भरे खत में जलाता कैसे।
0: ओहो, जी हाँ,
1: प्यार में डूबे तेरे खत में जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा के आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा के आया हूँ।
0: बहुत
1: तेरे खुशबू से भरे खत में जलाता कैसे। ये सबको पसंद आएगी, आप सुनाएं, मेरी पसंदीदा गजल है।
0: बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आइए दोस्तों, सुनते हैं जगजीत साहब की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: संदीप भाई, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी गजलें हमने सुनी, आपके शेर हमने सुने जो हमारे दिलों तक पहुंचे, और मुझे पूरा यकीन है हमारे सुनने वालों के भी दिलों तक पहुंचे होंगे। आपका बहुत बहुत आभार।
1: मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने दिग्गज लोगों की गजलें सुनाने के साथ हिमाकत कर सकूं कि अपना लिखा हुआ भी कुछ बोल सकूं, ये मौका देने के लिए और मुझे इस मौके के लायक समझने के लिए आपका हमेशा ताउम्र में शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, ये लम्हे और ये फिर भी मैं कभी भूलूंगा नहीं, जैसे इन लम्हों को सहेज के रखूंगा जिंदगी में आगे, ये बहुत काम आएंगे
0: जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई,
1: तो फिर मिलेंगे हम लोग।
0: जी जरूर जरूर जरूर, शुक्रिया। चाहतों का दौर कुछ ऐसा चला कि तेरी आवाज हर जगह सुनाई दी। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं अबीदा परवीन जी की आवाज में

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे। और कार्यक्रम लेकर आए हैं हम, कार्यक्रम का नाम है खेती बाड़ी कार्यक्रम और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। अपना रेडियो अपनी बातें। इस कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, उन मंटों पर बात करते हैं जो हमारे खेती किसानी में हमारे किसान साथियों के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। अभी चूंकि खेती किसानी में हमारे किसान साथी घर पर बैठे होंगे क्योंकि सीमित उनके पास जमीन है और उन्होंने खेती वो कर अपनी उत्पादन लेकर अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब अपने हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं ऐसी गर्मी के मौसम में, तो किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत लेकर आए हैं, यानी टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं क्योंकि पथरीला इलाका है, पानी कम है, किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं और अपने खेत की आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके के बीज लगने होंगे और किस तरीके के मौसम की जरूरत होती है और किस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है, इस बात पर हम जिक्र करेंगे आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए वो छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो उनके आय को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहती हैं। हम और आप देख रहे हैं कि खेती करना कितना मुश्किल हो गया है और ऐसे में किसान साथी चूंकि हम और आप देखते हैं कि सीमित उनके पास जमीन है, पथरीला इलाका है, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें का भी चयन हमारे किसान साथी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, साथ साथ में केबी है वहां पर जाकर भी संपर्क करना होगा, तब जाकर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर हम अपने किसान साथियों को छोटी छोटी बातों को बताएंगे और साथ साथ में आप उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम नर्सरी पर भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में अगर जैविक पद्धति की बात करें क्योंकि जैविक खेती करना ये अब धीरे धीरे अब हमारे किसान साथियों के जहन में आ गया है कि अब हमें रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी जो खेत खाली पड़े हुए हैं उनकी जुताई कर लें, जुताई के साथ साथ जो पराली रहती है पराली जलाए नहीं, आप उससे खाद उत्पादन कर सकते हैं और खाद से जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और उनसे भी अपने आय को बढ़ा सकते हैं क्योंकि लागत जब कम लगेगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि होगी। तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसान साथियों को टमाटर की नर्सरी किस तरीके से लगा सकते हैं उस पर जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, विषय विशेषज्ञ के पास आपको ले चलेंगे। लेकिन इस जानकारी से पहले आपको करा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से भीली गीत के साथ। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपका रेडियो अपनी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं हमारे वैज्ञानिक से, हमारे विषय विशेषक से, किस तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं टमाटर की, क्योंकि बहुत महंगा टमाटर चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, नर्सरी करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आय भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विषय विशेषक की इस चर्चा को।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है। आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है। हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे, तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें, तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, कि आप देखें पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है, जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है, और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो यह है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है, इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रोन वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा, और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है, तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं, और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहे तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा। उससे फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: दीवा की जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें, बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सचर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पर निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डायथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे,

0: जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी गाय और कहना।

0: कहना है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसा होने लगो, बताए कैसे यारों

0: मोहब्बत मत करना यारो, मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: जवाब सत्य लिखा है ना है, हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
0: कितना।

रेडियो टांडा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और मित्रों कैसे हैं, आपने जानकारी पाकर हमें आशा है कि हमारे किसान साथी जरूर अपने खेतों में नर्सरी लगाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए पथरीला इलाका है तो हमारे किसान साथी सब्जी भी लगा सकते हैं, साथ साथ में नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। एक और जानकारी थोड़ा देना चाहते हैं, टमाटर से जुड़ी है, क्योंकि टमाटर उगाने के लिए जलवायु परिस्थितियां किस तरीके की होनी चाहिए, पुष्पन एवं फल बनने के लिए भारी बारिश बादल नुकसानदायक है क्योंकि यह फूलों और फलों को गिरने का कारण बनता है, ये पौधे पाला और अधिक नमी के सामना नहीं कर पाते हैं, अधिक नमी के कारण फल सड़ जाते हैं, फल उगने बनने के समय तेज धूप के कारण गहरे लाल रंग के फल विकसित होते हैं, क्योंकि धूप अच्छी पड़ रही है तो ऐसे में किसान साथी कर सकते हैं अपनी अपनी खेती को लगा सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं। तापमान की अगर बात करें 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के कारण पौधे का विकास रुक जाता है, यदि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो फलों का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था पर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से विकास रुक जाता है, टमाटर के लिए आदर्श तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है, टमाटर की फसल में पानी की आवश्यकता आमतौर पर सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर उगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का साथ ड्रिप सिंचाई की सलाह भी दी जाती है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी अपने कृषि विस्तार अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और कैसे उगा सकते हैं उस पर भी अपन ध्यान केंद्रित कराएंगे। फसल में पानी की आवश्यकता 600 से 1500 मिलीलीटर वर्षा के बराबर होनी चाहिए और उचित मिट्टी की अगर बात करें तो अच्छी जल धारण क्षमता वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, आवश्यक स्तर 6.0 से 7.5, यदि पीएच आपका 6.0 है तो चूना डालें, यदि पीएच 7.5 है तो जिप्सम डालें उसमें, तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में आइए एक और गीत को सुन लेते हैं और इसके बाद हम किसान साथियों के लिए बताएंगे कि इस तरीके से बर्मी कंपोस्ट हमारे किसान साथी कर सकते हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। बने रहिए आपके आरजी मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम, आपका रेडियो अपनी बातें।

रेडियो टांटिया भी 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से वीली गीत को सुना, वीली गीत का आनंद लिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे किसान साथियों की खेत खाली है तो अभी क्या कर सकते हैं, वर्मी कम्पोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कम्पोस्ट कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, पशु मल, मूत्र एवं पत्तियों के डी कम्पोस्ट की विशेष प्रजाति के केचुआ के सहयोग द्वारा कम्पोस्ट में बदला जाता है। यह प्रतिक्रिया पर्यावरण स्वच्छता के साथ साथ कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। यह प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु के साथ साथ किसानों के लिए अति उपयोगी है। वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही साथ फसलों की पैदावार व गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मृदा पर होने वाले दुष्प्रभावों का वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से सुधार होता है। इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को टिकाऊ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अनुमानतः 1 किलोग्राम भार में 1000 से 1500 केचुआ होते हैं। प्राय 1 केचुआ 2 से 3 कोकीन प्रति सप्ताह पैदा करता है। तत्पश्चात हर कोकीन से 3 से 4 सप्ताह में 1 से 3 केचुआ निकलते हैं। 1 केचुआ अपने जीवन में लगभग 250 केचुआ पैदा करने की क्षमता रखता है। नवजात केचुआ लगभग 6 से 7 सप्ताह तक प्रजननशील अवस्था में आ जाता है। प्रतिदिन 1 केचुआ लगभग अपने भार के बराबर मिट्टी खाकर कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। 1 किलोग्राम केचुआ 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 45 किलोग्राम अपघटनशील पदार्थों में से 25 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट 60 से 70 दिनों में तैयार कर देते हैं। अब इसकी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले केचुआ का चयन करना चाहिए। केचुआ का चयन कैसे होता है? वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिसमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र हो, प्राकृतिक तापमान के उतार चढ़ाव सहने की क्षमता हो व कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए आइसिनिया, फीडिया और यूडिलियस यूजिने व पेरोसिक्स उन्नाव जनपद के आसपास के क्षेत्रों में आइसिनिया फीडिया वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोगी पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट योग्य पदार्थ जो रहते हैं, इस प्रक्रिया के लिए समस्त प्रकार के जैव क्षतिशील कार्बनिक पदार्थ जैसे गाय, भैंस, भेड़, सुअर व मुर्गियों आदि का मल, बायोगैस सलरी, शहरी कूड़ा, प्रायोगिक खाद्यान्न व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, आपको पता होगा फसल अवशेष अभी है, घास फूस व पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। इसमें चुनाव कैसे करें स्थान का? ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां छप्पर की छाया या टीन का सेट, कंक्रीट छत का प्रबंधन करने की सुविधा हो, साथ ही तापमान, वर्षा, अन्य शत्रु जैसे कि चूहे, छिपकली, सांप, नेवला और पंछियां जो रहते हैं उसका प्रबंधन तय हो। बेड बनाना यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के कई तरीके रहते हैं। किसान अपनी सुविधा एवं व्यवस्था के अनुसार उचित विधि का चुनाव कर सकता है। जैसे कि ज्यादातर किसान मुख्यतः एक विधि से बेड बनाते हैं जिसमें बेड बनाने के लिए 10 फीट लंबाई तथा 3 से 4 फीट चौड़ाई और 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई के आकार की पक्की ईंटों का बनाना चाहिए जिसे सीमेंट से जोड़ा जा सकता है और ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीमेंट का प्लास्टर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपोस्टिंग किसी भी प्रकार के पात्र जैसे मिट्टी या चीनी के बर्तन, बांस बेसिन, लकड़ी बक्से, सीमेंट टैंक आदि में किया जा सकता है। गड्ढों व बेड की लंबाई चौड़ाई उपलब्ध स्थान के अनुसार निर्धारित करें जिसकी गहराई व ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से अधिक ना रखें। कंपोस्टिंग के लिए सबसे नीचे सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे यानी घास फूस, केले के पत्ते, नारियल के पत्ते, फसलों के डंठल की तह बिछाएं। इसके बाद इसे तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं और पानी का छिड़काव 1000 से 1500 केचुआ प्रति मीटर की दर से छोड़ दें। इसके ऊपर सड़ा गोबर और विभिन्न व्यर्थ पदार्थ
जिसके खाद बनाना चाहते हैं, आंशिक रूप से सड़ाने के बाद डालें और इसे टाट व बोरी से ढक सकें। इस पर पानी का प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें ताकि नमी का स्तर 40% से ज्यादा रहे। कंपोस्टिंग हेतु छायादार स्थान का चुनाव करें जहां पानी का ना ठहरता हो। बेड की भराई करना प्रथम स्तर रहता है कि बने हुए बेड में सबसे नीचे 3 इंच मोटी ईंटों की टूटे हुए टुकड़ों से या कंक्रीट की तली बनानी चाहिए और उसका 1 से 2 इंच ढाल रखना चाहिए। उसमें एक जिस और ढाल है 2 से 3 इंच चौड़ा पाइप लगाना चाहिए जिस तरफ ढाल है। द्वितीय स्तर रहता है जल्दी ना सड़ने वाले पदार्थ जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों और सूखी भूसी या प्यार जो रहता है 4 से 5 इंच मोटी बिछा देना चाहिए। 7 दिन पुराने गौमूत्र से अच्छे से भिगा देना चाहिए। तीसरा स्तर रहता है कि द्वितीय स्तर के ऊपर 3 इंच मोटी सड़ी हुई गोबर की परत या गोबर गैस की निकली सलरी बिछाकर पानी में भिगो देना चाहिए। चौथा स्तर रहता है शेष बसी जगह में पशुओं का गोबर भर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। किसान अगर चाहे तो सब्जी के छिलके, भूसा, घास, पशुओं का बचा हुआ चारा आदि का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। 15 दिन पहले अधसड़ा हो जिसे केंचुआ खा सके आदि का उपयोग भी हम कर सकते हैं। बेड केंचुआ पर कैसे डालते हैं? बर्मी कंपोस्ट पिट के लिए एक विशेष प्रकार की केंचुए जिसे रेड बर्म कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम आइसिनिया फोडिया है, इस पर प्रयोग करने अपने बने बेड में 10, 4 और 2.5 पेट भरे गोबर में 5 किलोग्राम केंचुआ को ऊपरी सतह पर फैला देते हैं और थोड़ी देर बाद केंचुआ सभी पेट में प्रवेश कर जाते हैं और ऊपरी सतह पर जूट से बने बोरे का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर जो टेम्परेचर रहता है उसके अनुसार पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर बेड हो उसके ऊपर बरसात और धूप को बचाने के लिए छत और छप्पर होना अति आवश्यक है। बर्मी कंपोस्ट जब खाद बन जाती है उसके कैसे निकालना चाहिए? जब खाद बन जाती है तो उसमें 7 दिन पूर्व से पानी का छिड़काव बंद कर देना चाहिए। कंपोस्ट को देखने चाय की पत्ती की तरह दिखने लगे और पकड़ने पर चिपकने नहीं चाहिए और बनी खाद में केंचुआ की संख्या कमी और बर्मी में उपयुक्त पदार्थ के गलने के आधार पर खाद को बाहर लेना चाहिए। निकालते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खाद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर निकालते हैं और जिससे केंचुआ अपने आप नीचे चले जाते हैं। कंपोस्ट एकीकरण जो साधारणतः 60 से 70 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, इस अवस्था में पानी देना बंद कर दें जिसमें केंचुआ नीचे चले जाए और कंपोस्ट एकत्रित कर छान कर केंचुओ अलग कर दें और छाया में सुखाकर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर सील कर दें। उपयोग एवं उत्पादन कैसे होता? तैयार खाद को कहां उपयोग करना चाहिए इसकी योजना पहले बनानी चाहिए कि आप दलहनी की फसल अगर बोते हैं तो 2 टन बुवाई से पूर्व उसमें डाल देना चाहिए। तिलहनी की फसल में 3 टन रहता है बुवाई से पूर्व। मसाला व सब्जी अगर की फसल लगाते हैं तो 4 टन बुवाई से पूर्व। फूल वाली फसल लगाते हैं तो 5 टन बुवाई से पूर्व। फलदार पौधों का रोपण के समय 5 किलोग्राम या वृक्ष में अपन डालते हैं गमलों में मिट्टी के भार के पर 10%। लॉन में अगर डालते हैं 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें डालना चाहिए। तो ये

वर्मी कंपोस्ट बनाने की विशेष विधि को हमने जाना। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

अपना हक नहीं लड़ाई से, अपना हक नहीं लड़ाई लड़वा मत। गमे गम थी मारा भाइयो, मारी बहनों, मारा काका, मारी काकियो, ये बता साले सा।

0: कार्यक्रम खराब मारे ही थोड़ा
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
4: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और सुन रहे कार्यक्रम खेती बाड़ी।
3: जी हां साथियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे किसान साथियों के लिए हम बहुत ही लाभदायक जानकारी लेकर आते हैं कि हमारे किसान साथी कैसे खेती कर सकते हैं और कैसे खेती करके अपना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में ये भी बताते हैं कि इस मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि धूप आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी जब भी खेतों में जाते हैं तो अपने सर को ढककर रखें, तौलिए से, गमछे से या फिर किसी और चीज से, या टोपी भी आप लगा सकते हैं। खेतों में काम करते वक्त साथियों हमें ध्यान देना है कि पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है, अपने शरीर को पानी बार बार दें यानी कि पीते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा, तभी हम खेती का काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोताओं हम बात करने वाले हैं कि टिकाऊ खेती।
4: बिल्कुल श्रोता साथियों, कि टिकाऊ खेती आखिरकार है क्या, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि टिकाऊ खेती किसे कहते हैं, टिकाऊ खेती में किस तरीके से नई पद्धति से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना नई पद्धति का आ गया है कि कैसे किसान साथी नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर हमारे किसान साथी आगे बढ़ सकें, उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को नई नई पद्धति के बारे में खास तौर पर बता रहे हैं और कुछ ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना होगा किसान साथियों को, क्योंकि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। पानी की किल्लत को देखते हुए हमारे किसान साथी कम पानी वाली फसलों पर जा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब उसके लिए बीजों का चयन होता है, तो बीजों के चयन के लिए हमारे किसान साथी केवीके में जाकर या कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के माध्यम से जो हम कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं वो हमारे किसान साथियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण बातचीत हम लेकर आते हैं। और जैसा कि टिकाऊ खेती की अगर बात करें तो अभी हमारे किसान साथी, चूंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, तो उनको यदि पथरीला इलाका है तो छोटी छोटी जमीन भी हमारे किसान साथियों के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, पॉली हाउस एक माध्यम हो सकता है, ग्रीन हाउस जिसे कहा जाता है, उसमें नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, पौधे भी उसमें लगा सकते हैं, उसमें भी खेती कर सकते हैं। तो किस तरीके से खेती करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर आज हम एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। साथ साथ में कुछ किसान अपने जो सफल हुए हैं और वो अपने अनुभव साझा करेंगे, तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसानों के पास हमारे श्रोता साथियों को ले चलते हैं, उनके अनुभवों को हम जानते हैं, वो नई पद्धति से किस तरीके से खेती करते हैं, क्या अनुभव उनका रहा है। तो आइए हम अपने किसान साथियों की आवाज में इस उनकी कहानी को हम सुनते हैं।
5: मैं विवेक यादव, मैं एक मध्यवर्गीय सुभाष नगर किसान हूँ। भैया, अगर हम अपनी नई तकनीकों को आज हम अपने खेतों में लगाते हैं तो भैया लागत आती है, पर यह लागत एक बार की है जिससे हम भविष्य में काफी समय तक इससे लाभ ले सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया लगाओ एक बार और काटो बार बार।
6: मैं सुंदरदास जगदीशपुर का किसान, हमारे ख्याल से आज स्थिति को देखते हुए नई तकनीकों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग पिछड़ जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, नई तकनीकों को अपनाना थोड़ा महंगा जरूर है।
7: मैं जवाहर नगर का एक छोटा सा किसान हूँ, मेरा नाम अभिषेक है। भैया, यह बात तो सही है कि खेती में अगर हम वैज्ञानिक तकनीक लगाएं तो इससे थोड़ा खर्चा तो आता है, पर इससे आने वाले समय में बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले पंप सेट लगाया था और मैं अभी तक उससे सिंचाई कर रहा हूँ।
8: किसान भाइयों की बात को ध्यान से सुनते हुए मुझे एक धारणा का पता चला। भाइयों कि हमारे सभी किसान भाई सोचते हैं कि भाई अगर हम उन्नतशील खेती करना चाह रहे हैं और नई नई जो तकनीकें हमें जो विशेषज्ञ बताते हैं उनको अपनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए निवेश करना बड़ा जरूरी है और निवेश भी मामूली नहीं, बड़ा निवेश है किसान भाइयों। तो इस निवेश को किसान कैसे देखे, क्या खर्चा है उसके लिए या कि एक कमाई का नया साधन, और इसी बात से एक विषय जो सामने आया है कि निवेश एक बार लाभ बार बार, यानी एक बार निवेश करने के बाद आप लाभ बार बार कैसे लें, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों की धारणा को और मजबूती से समझते हैं और चलते हैं बातों बातों में, जो कि है एक लघु नाटिका।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी वाते।

अपना हकनी लड़ाई से अपना हकनी लड़ाई लड़वा माटे गामे गाम थी मारा भाईओ मारी बोनो मारा काका मारी काकियो ए बताओ साले साले

0: जय आदिवासी, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: हाँ दिशा में पकड़ो, उधर से पकड़ो, चलो। हाँ ये रुको रुको रुको रुको रुको, तुम रुको रुको, मैं पहले उतरता हूँ। हाँ हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक,
2: आराम से आराम से।
3: अरे घर में शादी है क्या? राम राम
1: राम राम, तुम हटो यार जरा,
2: एक बार
1: हाँ।
2: का कह रहे हो कल्लू भैया?
3: घर, मैंने कहा घर में किसी की शादी है क्या भैया?
1: शादी से तुम्हारा मतलब?
3: अरे इतना सारा सामान लेकर आए हो, शादी का ही लग रहा है।
2: शादी का? अरे कल्लू ये जो पाइप है, ये सामियाना का पाइप थोड़ा ना है। ऊपर से ये बताओ, जो सामियाना कहीं पन्नी का लगता है क्या है?
3: ये तो बात सही कह रहे हो भैया, लेकिन है क्या ये बवाल?
1: अरे भाई कल्लू कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, हम लोग अच्छी खेती चाहते हैं, इसके लिए पाली हाउस लगा रहे हैं।
2: हाँ और तुम्हें पिछली बार की बात याद है, संगम भैया कह रहे थे कि हम लोगों को टिकाऊ खेती करनी चाहिए, और टिकाऊ खेती के लिए अगर हम पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
3: इसके लिए पैसा तो बहुत खर्च किया दिलशान भैया।
1: हाँ थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन भाई वो सब बराबर हो जाएगा, क्यों दिलशान भाई?
2: बिल्कुल भाई, आज हम पैसा लगा रहे हैं, कल पैसा फिर आएगा और परसों फिर आएगा।
3: इससे अच्छा तो आप अपने पान की दुकान खोल लेते, उससे तो रोज रोज आमदनी आती।
1: तुम भी यार कल्लू, हद है
2: भैया, हम लोग हैं किसान, हम लोग खेती करेंगे तभी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, पान और बीड़ी सुरती बेच के कुछ नहीं होने का है।
1: और वैसे भी कल्लू छोटा बिजनेस नहीं, बड़ा बिजनेस करो,
2: और आज की नहीं आगे की सोचो
4: भाई। पॉली हाउस में लगाओ लागत एक बार और कमाओ बार बार।
2: संगम भैया राम राम,
4: राम राम भैया राम राम।
1: संगम भैया कैसे हैं?
4: मैं तो भैया आप ही जैसा हूँ, एकदम टकाटक।
1: संगम भैया, यहाँ मैं और दिलशान भाई पॉली हाउस के लिए जो सामान था ले आए हैं, आप जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं, क्यों दिलशान भाई?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम भैया जिस दुकान पे आपने कहा था, हमने सामान वहीं से लिया, इससे और दुकान से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है।
3: संगम भैया कितना भी सस्ता पड़ा हो, लेकिन है तो महंगा ही।
4: अरे कल्लू भैया आप कह तो सही रहे हो, लेकिन आज तो जरूर ये महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यही तो आपको बरकत देके जाएगा, तब आपका जो पान का खोखा है ज्यादा महंगा महसूस होगा और ये पॉली हाउस बहुत ही सस्ता लगेगा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो संगम भैया। कल्लू भैया आज हम ये पॉली हाउस लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि अगली बार इसको उखाड़ के बेचना पड़ेगा, एक बार ये लग गया तो सालों साल चलता है।
1: अरे दिलशान मियाँ किसे समझा रहे हो, तुम तो जाओ कल्लू अपनी पान की दुकान खोलो, और हम भी तुम्हारे वहाँ आएंगे 10 साल बाद पान खाने।
3: चलो पान वान भैया छोड़ो, ये बताओ इस पॉली हाउस जो लगा रहे हो उससे क्या क्या फायदे होंगे?
4: अरे भैया पॉली हाउस में ऐसी फसलों का उत्पादन हो सकता है जो उस मौसम में बाजार में नहीं मिलती, और जो फसलें बाजार में नहीं उपलब्ध हों और वो फसलें तुम बाजार में ले जाओगे तो बताओ कितना मुनाफा होगा, यानी 40 पैसे का बैंगन 40 रुपये में मिलेगा।
3: अरे भैया ये तो मुनाफे वाली बात है, तो क्या मैं इसमें आपकी सहभागिता ले सकता हूँ?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं दिलशान भाई,
2: क्यों नहीं? लेकिन भैया जितना खर्चा हुआ है उतने के बराबर ही खर्चा देना पड़ेगा।
3: चलो ठीक है, मेरा भी एक हिस्सा जोड़ लो।
4: अरे ये हुई ना बात, तुम भी समय के साथ साथ चलने लगे हो, इसका मतलब हुआ थे बुद्धू और बन गए महात्मा बुद्ध।
5: कार्यक्रम खेती बाड़ी में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपनी बातें। अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे एक लघु नाटकिया जिसमें हम जान रहे थे कि किस तरह से पॉली हाउस होते हैं और हमारे किसान साथी कैसे उसमें नर्सरी लगाकर कुछ फायदा ले सकते हैं। चलिए श्रोताओं अब हमारा वक्त हो चला है अगले सेगमेंट का। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो नई पद्धति के बारे में हमें बता रहे हैं, तो कैसे हमारे किसान साथी उस नई पद्धति का फायदा ले सकते हैं। लेकिन श्रोताओं उससे पहले हम यहां पर सुन लेते हैं एक गीत को।

0: कई तरह के होते हैं, और जैसे आपका लो कास्ट है, मीडियम कास्ट है, हाई कास्ट है, तो हमारे किसान भाई किस तरह का पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं, कास्ट उस पर निर्भर करता है। इसमें जो हम पॉली सीट यूज करते हैं उसमें भी बहुत तरह की पॉली सीट आती है कि एंटी डस्ट है, एंटी सल्फर है, एंटी फॉग है, तो ये लागत तो इस पर निर्भर करता है कि हमारे किसान भाई किस चीज का बनाते हैं। आप बांस का भी बना सकते हो, साधारण पॉली हाउस, आप तो चाहे आप अब तो जीआई पाइप्स आती हैं उसका भी आप पॉली हाउस बना सकते हो, किस तरह का बनाते हैं। ज्यादा करके किसान भाई जो हमारा प्रदेश है, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हम लोग के लिए लाभकारी होता है। बनवाते समय इसमें एक ही बात का ध्यान रखते हैं, कम से 60-70% इसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बीमारियों वगैरह का प्रकोप बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बनवाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पॉली हाउस बिल्कुल आपका ना हो जहाँ पे छाया आती हो, या ऐसी जगह ना हो जहाँ पे पता लगा बरसात के दिनों में पानी भर गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेंस वगैरह से थोड़ा घिरा हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जानवर उसके पास कम से कम जा सके। पानी का स्रोत उसके आसपास होना चाहिए और बाजार से भी नजदीक हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीजें हैं, और एक महत्वपूर्ण है कि पॉली हाउस बना लेते हैं तो चूंकि हम ठंडी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसान भाई पॉली हाउस अगर बना, ऐसा नहीं कि जब भी जो ये आता है और पॉली हाउस खोला और अंदर घुमाने के लिए चले गया, पॉली हाउस इसके लिए नहीं होता है। पॉली हाउस को कम से कम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बनाते समय एक और ध्यान रखिएगा कि दरवाजे जो है आपके बिल्कुल सामने की तरफ न खुले, थोड़ा सा घूम के आप दरवाजा बनाइए, इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट अंदर जा नहीं पाते हैं, तो ये हमें काफी उससे लाभ रहता है। और जिन किसान भाइयों के जैसे पॉली हाउस बनवा चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, तो बरसात बीतने के बाद एक बार उसकी जो है पॉली सीट जो ऊपर होती है सर्फ से उसकी धुलाई जरूर कर दें, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम होता है कि बरसात के बाद पन्नी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी काई जैसी जमने लगती है, तो आप धुलाई कर दोगे तो उत्पादन जो है एक बार फिर से आपको दोबारा अच्छे प्रकार से मिलने लगेगा। और एक पॉली हाउस बनाते हैं तो आप पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाएं, कई सारे पॉली हाउस आपके लगे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि जो भी किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं बिना तकनीकी जानकारी लिए हुए न बनवाएं तो बेहतर रहता है। एक बार आप जानकारी जरूर लें, क्योंकि आपके उपयोगिता क्या है, कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, ये सब चीजों का, जैसे उसमें मिस्ट सिस्टम लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, तो हम सारी चीजों की जानकारी देते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और कितना बड़ा पॉली हाउस आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कम से कम आपका होता है कि 100 वर्ग मीटर का तो होना ही चाहिए, तो 100 से लेकर 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस अच्छा माना जाता है। इन सब चीजों को बनाए और लगाने का होता है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा, तो सावधानी के लिए भी आपको जो दवाएं हैं और जो डोज है बाहर से थोड़ा अलग होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो आप किसी वैज्ञानिक से या संस्था से जुड़े रहें। बस ये है कि नहीं कि आप सब्जी का जैसे खेती से लगातार आय बढ़ाने का ये है कि खेत को हम कभी खाली ना छोड़ा जाए, और पहले से सोच के डाइवर्सिफिकेशन की एक बात होती है कि ज्यादा तरह की फसलों का चुनाव किया जाए। बहुत सारी जैसे बीच में छोटा छोटा जैसे आपका गैप आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोबिया की बात होती है कि आपका गेहूं कटेगा और उसमें आप लोबिया थोड़े समय में 60 दिन में लगा के ज्यादा से ज्यादा जो है धान कटने के बाद आप लगा के ले सकते हैं, गेहूं और उसके लगने के पहले जो है आप उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो आप थोड़े थोड़े समय में, जैसे मूली एक ऐसी सब्जी है आप इसको साल भर में 8 बार लगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि दो फसल के बीच में जो है हमारा थोड़ा गैप हो रहा है 25 दिन 40 दिन, तो आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करिए, लगाइए और आमदनी ले लीजिए। बिल्कुल भी हमें जो अगर हम लगातार लगे रहें और सोच बनाए रखें, खासतौर पर उन सब्जियों को भी जैसे लगता है कि साल भर आमदनी की बात है, तो कुछ किसान भाइयों को पॉली हाउस वगैरह भी बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना मौसम में भी जो है सब्जी हम लगा के आप जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। और लगाने सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाई जैसे है कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस सब्जी को लगाने जा रहे हो उसमें लागत कितनी आएगी और उसका बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है। तो जहां भी आप लगाने चाहो, ये नहीं कि हमने कह दिया कि कोई भी सब्जी आप साल भर उगाते रहिए, इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप सब्जी उत्पादन शुरू करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा बहुत कोई नई सब्जी आप जैसे ज्योति का आप लेट्यूस लगाना चाहते हैं, सिल्ली लगाना चाहते हैं, इस तरह की सब्जियों की अगर खेती करना चाहते हैं तो एक बार बात जरूर कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जैसे हमारे दिल्ली है, वहां आपको मूल्य बहुत ज्यादा उसका मिलेगा। तो इस तरह की चीजों में लगने से पहले एक बार बाजार को देख ले, वैज्ञानिक सलाह जरूर ले ले। और मुझे लगता है कि ऐसी सब्जी है जैसे टमाटर तो पूरे साल भर, और किसान भाई देख रहे हैं कि हर एक सब्जी पूरे साल भर मिल रही है, मिल कहां से रही, जब कोई किसान उगा रहा तभी तो मिल रही है आपको, तो दूसरा उगा सकता है, हमारे देश के दूसरे भाग में उगा सकता है, तो हम क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो पूरा है कि सब्जी से अगर व्यवसाय में लगा जाए तो हम पूरे साल भर जो है उसमें लगे रहेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हमें आधुनिकरण करना पड़ेगा कि हमें जो है पाली हाउस है, मल्च है, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, कुछ नई चीजें जो आई हैं, नई प्रजातियां हैं, इनका हम समावेश करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि साल भर जो है हमारा जो परिवार, हम खुद भी अच्छी सब्जी खाएंगे, दूसरे को भी अच्छा खिलाएंगे। तो ये जैसा कि है कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो सब मिल के चले तो सभी अच्छा ही अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना विषय विशेषज्ञ को, तो काफी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी हमारे किसान साथियों के मन में, जो भी सवाल चल रहे थे इस खेती को लेकर और साथ में नई पद्धति को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास का क्लाइमेट एकदम से खराब होता चला जा रहा है, पानी की कमी हमें देखने में आ रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन से वे बीज हैं जिनका चयन करके हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा एक मिल सकता है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं और आइए इसी कार्यक्रम में हमारे साथ पशुपालन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि पशुपालन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो इस मौसम में हम कैसे पशुपालन पर ध्यान दे सकते हैं, क्या चीजें उनके लिए सही होती हैं, क्या हमें करना चाहिए पशुधन के साथ, तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
3: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालन

0: कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
1: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई। मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या

0: और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए उनको दे रही हूँ, क्योंकि मेरे मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पर डिपेंड ना होए।
1: वही पीएयू के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाह देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही पीएयू ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
2: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर दयाल सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है, जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
3: रेडियो टंडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
4: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
3: जी हां साथियों, अभी आप सुन रहे थे सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से साथियों हम जब खेतों में चावल उगाते हैं और उसको सीधा ही हम मंडी पर बेच देते हैं, जिससे हमें बहुत ही कम मुनाफा और सीमित मुनाफा मिलता है, लेकिन अगर हम उन्हीं चावलों का कोई और प्रोडक्ट बनाकर तैयार करें, उनकी पैकिंग कर अगर बेचें, तो उससे 2 गुना फायदा हम कमा सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें समझने की और एक प्लान करने की कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में दालें बहुत ज्यादा होती हैं, अगर आप किसी और सब्जी की बहुत ज्यादा पैदावारी करते हैं, मान लीजिए आपका आलू बहुत ज्यादा होता है, तो आप आलू ऐसे ही बेचने की बजाय आप उनकी चिप्स बनाकर भी बेच सकते हैं बाजारों में, जो आपकी अच्छे दामों में चली जाएगी, जिसका अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान साथियों को सीधे पहुंच सकता है। तो साथियों, ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि हमारा समय हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो आज का ये कार्यक्रम खेतीबाड़ी साथियों आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर फोन के माध्यम से बताना ना भूलेगा और साथ में हमें सुझाव भी दीजिएगा, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम आपके अनुसार यानी आपके लिए फायदेमंद है तब भी हमें बताइएगा, और फायदेमंद अगर नहीं है तब भी हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है
4: 9425416603। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ साथ में यदि आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ साथ में विषय विशेषज्ञ की सलाह भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो हम अपने विषय विशेषज्ञ से सलाह लेकर आपके सवालों का जवाब हम कार्यक्रम के माध्यम से दिलाएंगे। और हम साथियों कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं वो छोटी सी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचनी चाहिए जो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। खासतौर पर अगर देखा जाए कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे वर्षा जी ने बताया था कि हम सीधे जैसे चावल को बोते हैं और उसको बेच देते हैं, तो डायरेक्ट ना बेचकर या फिर आलू यहाँ पर वहां पर जो भी सीजनेबल चीजें रहती हैं जो उगाई जाती हैं खासतौर पर झाबुआ में, तो उनको सीधा ना बेचकर उनको पैकिंग कर यदि संगठन के माध्यम से अगर हम उसको बेचा जाए तो आपको दाम भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी आपको अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझनी होगी, सोचनी होगी और अपने जीवन में अपनानी होगी। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो आपके रेडियो साथी मनीष
3: और आपके रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग आपके हेल्थ के संग, आपके स्वास्थ्य के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ है डॉक्टर शानु जैन, जो एक सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं HCG हेल्थ केयर सेंटर नागपुर में। थैंक यू सो मच डॉक्टर शानु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आई वुड सिंसियरली लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए।
1: थैंक यू समीर जी फॉर अ वार्म वेलकम। तो मैं डॉक्टर शानु जैन नागपुर में पिछले 12 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आई एम अ सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। मेरा सारा स्टडी जो हुआ है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से और फिर हैदराबाद से, और ऑन्कोलॉजी जो कैंसर का स्पेशलाइजेशन और जो फर्दर स्टडीज है वो मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में किया था, रेसिडेंसी भी किया था और फेलोशिप भी किया था। थैंकफुली मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें मेरा एक रेक्टल कैंसर पर एक स्टडी था और हमने वो प्रेजेंट किया है। एंड आई हैव रिसीव्ड फ्यू मेडल्स आल्सो इन सम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड या आई एम हियर फॉर पास्ट 10 years 12 years एंड आई एम डेडिकेटेड to the cancer treatment and cancer में जितने भी advanced radiation techniques होते हैं वो उनसे हम patients को treat करते हैं और उन्हें एक proper staging and diagnosis होने के बाद में जो भी appropriate treatment होता है as a teamwork हम उनको offer करते हैं।
0: बहुत खूब, amazing amazing। दोस्तों आपने सुना डॉक्टर शानु 12 साल से ज्यादा के समय से प्रैक्टिस कर रही हैं, कैंसर ट्रीट कर रही हैं। हिंदुस्तान के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली है, तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर फील्ड में यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट में डॉक्टर शानु परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, जानकार है। आज हम डॉक्टर शानु मैम से बात करेंगे इसी बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत सारे लोग कैंसर के बारे में जानते हैं फिर भी बहुत गलत फहमियां पालते रहते हैं। यूं कहा जाए तो देखिए, मैं भी कैंसर के बारे में काफी कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी जब अचानक से कोई लेमैन मुझसे पूछ बैठता है तो मैं भी देखा जाए तो घबरा जाता हूं। तो प्लीज हमें बताइए ना बिल्कुल साधारण भाषा में कि कैंसर क्या है और क्या ये सचमुच इतना खतरनाक है जितना हम इसे समझते हैं।
1: अगर मैं बताऊं कि कैंसर क्या है, कैंसर एक ऐसी स्थिति है जहां पर शरीर की कुछ कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होने लगता है और उस विभाजन की वजह से वहां पर एक गांठ या ट्यूमर की उत्पत्ति होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में जब आप हमारी कोशिकाएं होती है वह वृद्धि, विभाजन और अंततः प्राकृतिक मृत्यु ऐसे एक साइकिल से विशिष्ट पैटर्न को फॉलो करती है। बट कैंसर में ये जो नॉर्मल पैटर्न होता है सेल के डिवाइड होने का और उसके ऑटोमेटिक उसका डेथ होने का, हाँ, तो ये वाला जो साइकिल है वो डिसरेगुलेट हो जाता है और यहाँ पर सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में प्रोलिफरेट करने लगती है या बढ़ने लगती है। तो इनिशियल स्टेजेस में जब ये होने लगता है, जिस भी कारण से हो, अलग अलग कारण होते हैं उसके, तो इनिशियल स्टेज में वो लोकल जहां पर जिस जगह पर है वहीं रहता है, लेकिन अगर उसको सही समय पर निदान ना किया जाए उसका, तो वो फिर शरीर के दूसरे भागों में भी फैलने लगता है। तो ऑब्वियसली अगर ध्यान ना दिया जाए या ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो कैंसर शरीर के दूसरे भागों में फैल कर जानलेवा साबित हो सकता है। बट द मेन मैसेज इज कि अगर हम इसे अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं तो यह बिल्कुल एक ट्रीटेबल बीमारी है और उससे इतने डरने की बात नहीं है।
0: बहुत खूब, थैंक यू सो मच डॉक्टर शानु मैम। दोस्तों आपने सुना, अगर हम इसे पहले ही पहचान लें और ट्रीटमेंट शुरू कर लें तो ये बिल्कुल एक आम बीमारी की तरह है। ये इसे खतरनाक समझकर इसे एक तरीके से मृत्यु सेंटेंस, मृत्यु का संदेश समझकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल एक साधारण बीमारी की तरह है। शर्त यही है कि हम इसे पहले पहचान लें। थैंक यू सो मच मैम। वैसे आगे बढ़ते हुए इसी बात से संबंधित एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि कोई व्यक्ति भला कैसे पहचान सकता है कि शायद उसे कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? मतलब शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जब उसे लगे कि मुझे चेकअप करा लेना चाहिए?
1: ओके, तो मैं आपको एक बेसिक कैंसर का थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कैंसर, जैसे हमने बात करी, एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो है कार्सिनोमा। वो स्क्वेमस या एडिनोटाइप का होता है और वो शरीर के किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सकता है, अगर ऑर्गन यानी अंग में, और वही अगर ब्लड फॉर्मिंग सेल्स या बोन मैरो जो होता है, जो हड्डी के अंदर बोन मैरो फॉर्मिंग सेल्स में अगर व्हाइट सेल्स का कुछ होता है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर हड्डी, हाँ, अगर हड्डी का कोई कैंसर है या सॉफ्ट टिश्यू या मसल्स का कुछ रहता है उसे सार्कोमा कहते हैं। जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली,
0: इम्यून सिस्टम
1: में जो व्हाइट सेल्स, हाँ, व्हाइट सेल्स का जो प्रोलिफरेशन होता है लिम्फ नोड्स में जो होता है उसे लिम्फोमा कहते हैं। ब्लड में प्लाज्मा सेल्स अगर बढ़ रहे हैं तो या अबनॉर्मल होते हैं तो वो माइलोमा होते हैं। तो ये विभिन्न कैटेगरी ऑफ सेल्स हैं जो विभिन्न कैटेगरी कैंसर्स को की उत्पत्ति होती है जिनसे। तो अभी मैं मोस्ट कॉमनली जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं सॉलिड ट्यूमर्स, यानी कि जो अंग से कार्सिनोमा, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो जो कार्सिनोमा है वो जैसे मैंने की बताया कि किसी भी अंग से शुरुआत हो सकती है, तो वो शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी अंग में हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ जो पाया जाने वाला कैंसर होता है वो होता है मुंह का कैंसर या गले का कैंसर। तो अगर मुंह का कैंसर है, कोई छाला है, तो और वो काफी टाइम से ठीक नहीं हो रहा है, आप दवाइयां ले रहे हैं लेकिन वो वैसा ही है या बढ़ रहा है, आपका मुंह खुलना कम हो जाता है उसकी वजह से, गले में गांठ है अगर है, या मुंह से कहीं खून निकल रहा हो बार बार उस छाले में से, और गले में आवाज बैठ रही हो, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये मुंह के और गले के कैंसर्स के सिम्टम होते हैं। अगर वही अगर आप महिलाओं में देखें तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, यानी स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो अगर कोई भी गांठ होती है जो साइज में बहुत ही जल्दी बढ़ रही है, और कभी निपल से एबनॉर्मल ब्लड का डिस्चार्ज हो सकता है या स्किन अंदर धंस रही हो, साइज में फर्क हो रहा हो, तो ये सारे ब्रेस्ट कैंसर्स के सिम्टम है। बगल में गांठ आना या ब्रेस्ट में कोई गांठ फील होना
0: जी।
1: अगर वो सर्वाइकल कैंसर है तो सर्वाइकल या यूटेराइन कैंसर
0: जी,
1: या गर्भाशय का जो हम कहते हैं कैंसर, उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। मतलब पीरियड्स के अलावा अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है किसी भी महिला में
0: जी,
1: उनको मेनोपॉज हो गया हो, उसके बाद में भी अगर कुछ ब्लीडिंग महसूस हो रही है तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। या परसिस्टेंट वाइट डिस्चार्ज या डिस्चार्ज है जिससे स्मेल आ रहा हो
0: जी।
1: तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन या डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं
0: जी।
1: अगर आपका अगर हम आहार नलिका की बात करें तो आहार नलिका में अगर आपको खाना निगलने में दिक्कत होती है, अगर अटक रहा है खाना, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है
0: जी।
1: अगर आपको लंग्स का कैंसर होगा तो शुरुआती स्टेज में खांसी होना या परसिस्टेंट खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, या अगर रेक्टम कैंसर है जो अगर परसिस्टेंट आपको मल के साथ में ब्लीडिंग हो रहा हो या ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, तो ये जो शुरुआती लक्षण होते हैं खांसी में ब्लीडिंग होना या स्टूल्स के साथ में ब्लीडिंग होना, यूरिन में ब्लीडिंग होना, तो ये अगर असामान्य रक्तस्राव कहीं से भी हो रहा है तो वो एक उसका सिम्टम रहता है। और सामान्य तौर पर मतलब कोई भी घाव या छाला अगर नहीं भर रहा है, स्किन में चेंजेस होने लगते हैं, खाने का मन नहीं करता है, वजन में कमी, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हम कहते हैं
0: जी
1: कि खाना ही नहीं खा रहे, मन ही नहीं कर रहा है, वजन घटते जा रहा है, शरीर में दर्द रह रहा है, थकावट महसूस हो रही है, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं और जिस जगह का है उस हिसाब से कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स हर कैंसर के अलग अलग होते हैं।
0: जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर शानू, थैंक यू सो मच। दोस्तों जितना मैं समझ पाया हूँ डॉक्टर साहब के कहने से, जाहिर सी बात है अब अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको बेहतर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी कहीं से भी कोई असामान्य रक्त स्राव यानी कि असामान्य ब्लीडिंग हो रही है कहीं से भी, चाहे वो मुंह से हो रही हो, लंग्स से हो रही हो, कि आप खांसी आ रही है तो उसमें ब्लड आ रहा है, या आपके स्टूल में मल में अगर ब्लड आ रहा है, आपके स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, छालों में से ब्लड आ रहा है, कोई भी असामान्य ब्लड ब्लीडिंग अगर हो रही है तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, हमें इसकी चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बताया, सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी बताया, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए हम डिसाइड करें कि हमें कुछ इस तरीके की चीज हो रही है जो असामान्य है और हम ये सोचें कि चलिए किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिल लेते हैं, तो वहां जाने से पहले हमें क्या क्या टेस्ट करा लेने चाहिए, जांचें कुछ एक अंदाजा, ऑफ कोर्स आपके पास आने के बाद तो आप स्पेशलाइज्ड टेस्ट लिखेंगे कि ये जांचें करानी है, फिर भी आपके पास पहुंचने से पहले हम क्या क्या जांच करा लें।
1: देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंसर में सबसे पहले एक ट्यूमर डेवलप होता है।
0: जी
1: ट्यूमर सबसे पहले हमें एक गांठ जैसा भी फील होता है कई बार, तो कई बार जो कैंसर का डायग्नोसिस है उसके लिए जो सबसे पहली जांच होती है वो होती है बायोप्सी की जांच, या जिसे
0: जी
1: कहते हैं कॉमन इसमें हाँ टुकड़े की जांच, एफ एन ए सी या बायोप्सी। तो उसमें उस गांठ में से या छाले में से हम एक टिश्यू लेकर उसको हम माइक्रोस्कोपी में एग्जामिन करके उसका डायग्नोसिस स्टैब्लिश करते हैं कि वो कौन से टाइप का कैंसर है। वह सबसे ज्यादा जरूरी होता है कैंसर के डायग्नोसिस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो अगर वो आपके प्राइमरी डॉक्टर जिनके पास आप कोई भी सिम्टम लेके गए हैं और वहां पर अगर बायोप्सी में कुछ भी कैंसर जैसा आता है तो डेफिनेटली वो लेकर आपको हमारे पास आना है। और उसके पहले कैंसर डायग्नोसिस के पहले तो हम यही बोलेंगे कि आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए, जैसे कि एक्सरे है, सोनोग्राफी है, ताकि कुछ भी एबनॉर्मल हो तो पता पड़े। लेकिन अगर बायोप्सी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम कैंसर का बकायदा, आप जब हमारे पास आते हैं तब हम बकायदा उसका एक पूरा स्टेजिंग करते हैं कि कैंसर का एक्सटेंट जानने के लिए कि वो कितना उस वो फैला है, वो उसी जगह पर है या आजू बाजू में भी स्प्रेड हुआ है या शरीर के किसी और भाग में भी स्प्रेड हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द कैंसर अलग अलग हम इन्वेस्टिगेशन बताते हैं। द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है हमारे पास आने के बाद में कि हम या तो पेशेंट को सीटी स्कैन बताते हैं या एमआरआई बताते हैं या पेट सीटी बताते हैं, वो सारा एक स्टेजिंग स्टैब्लिश करने के लिए, टू नो द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज। और स्टेजिंग होने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि पहले क्या करना है और फिर आगे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, इस हिसाब से होता है हमारा।
0: परफेक्ट परफेक्ट दोस्तों, बहुत साफ तौर पर बहुत ही सीधी साधी सिंपल लैंग्वेज में डॉक्टर शानू बता रही हैं कि आप नॉर्मल रूटीन अपने टेस्ट्स करवाते रहिए अपने जो भी फिजिशियंस आप जिनसे मिलते रहते हैं, और अगर उन्होंने फाइन नीडल एस्पिरेशन के थ्रू यानी कि एफएनएसी जिसको बोलते हैं, या फिर बायोप्सी से अगर उन्होंने देखा है कि कुछ तो बेहतर जानकारी होनी चाहिए उस ट्यूमर की, पॉजिटिव है अगर वो, तो वो आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। वहां भी आपको बिल्कुल भी एक भी पैसे की घबराने की जरूरत नहीं है, कैंसर स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर शानू हैं वो आपकी पूरी जांच करती हैं, कुछ और टेस्ट्स लिखती हैं करवाती हैं, इसलिए कि वो पता कर लें कि आपका कैंसर कहाँ है, कितना हो गया है। ये पहली ही स्टेज है दोस्तों, अगर हमने इस पहली ही स्टेज पर उसे पकड़ लिया तो हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, आप डॉक्टर के पास जाइए। तो बहुत खूब, थैंक यू सो मच डॉक्टर शानू। तो आगे पूछना चाहूंगा कि अब जस्ट इन केस हमें पता चल गया कि ओके कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपके पास पेशेंट फर्स्ट स्टेज का ही आए, फिर आप कैंसर के इलाज के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं?
1: जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर कैंसर अलग सिम्टम्स और स्टेज वाइज प्रेजेंटेशन होता है, तो उसी तरह ट्रीटमेंट भी हर कैंसर का एक डिफाइंड, हमारे इंटरनेशनल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कौन से कैंसर के कौन से स्टेज के लिए हमें लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो प्रायः जितने भी सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उन्हें हम सर्जिकली रिमूव करने का, अगर अर्ली स्टेज में है तो हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि हम सर्जरी करके वो ट्यूमर को बाहर निकालते हैं। तो कैंसर के अलग अलग टाइप से इलाज होते हैं, एक होता है सर्जिकल रिमूवल, एक होता है कीमोथेरेपी या एनी काइंड ऑफ सिस्टमिक थेरेपी, जहां पर हम इंजेक्टेबल्स या ओरल टैबलेट्स के थ्रू दवाइयां देते हैं जिसमें वो ब्लड में रन करके कैंसर का सेल अगर कहीं पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रन करता है तो उसको वो टारगेट करके मारता है, किल करता है कैंसर सेल को। थर्ड टाइप का ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है रेडिएशन थेरेपी, जिसकी मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ। तो रेडिएशन थेरेपी हाई एनर्जी एक्सरे का इलाज होता है, जो क्ष किरण या विकिरण जिसे हम कॉमन हिंदी भाषा में कहते हैं
0: जी।
1: तो ये बहुत ही हाई एनर्जी एक्सरेज का ट्रीटमेंट होता है, काफी फोकस्ड और प्रिसाइज ट्रीटमेंट होता है, और ये सेल के जिस जगह पर कैंसर है हम उस जगह पर जब रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो ये सेल के डीएनए को डायरेक्टली हिट करके उसको मारता है। तो ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये लोकल ट्रीटमेंट है। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी जो होते हैं ये लोकली जो ट्यूमर है उस पर एक्ट करते हैं, और ब्लड में अगर कुछ रन कर रहा हो तो उसके लिए कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी इस टाइप के कुछ इलाज होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, हमें अगर अर्ली स्टेज है तो हम डायरेक्टली सर्जरी ऑफर करते हैं, अगर थोड़ा सा सेकेंड या थर्ड स्टेज में रहता है तो कई बार हम कोशिश करते हैं कि उसे कीमो देके या कुछ रेडिएशन देके थोड़ा छोटा किया जाए और बाद में हम ऑपरेशन करते हैं। और अगर थोड़ा बड़ा हुआ है या बहुत ही ज्यादा अगर फैला हुआ है तो फिर ऐसे केसेस में, अगर शरीर के दूसरे भागों में फैला हुआ है तो ऐसे केसेस में हम कीमोथेरेपी ही मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं पेशेंट्स को।
0: बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडिएशन थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, ये चीज डॉक्टर साहब ने अभी बताई। बहुत ही आसान, बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही कारगर तरीका है ये कि शरीर के जिस हिस्से में भी कैंसर है वहां पर फोकस करके रेडियोथेरेपी दी जाती है और जो बीमार सेल्स हैं उनको मारा जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा रेडिएशन थेरेपी से ही संबंधित कि ये मैं मानता हूं अलग अलग कैंसर पर अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते होंगे, लेकिन फिर भी ये अंदाजन कितने दिनों के लिए ये चलती है थेरेपी और कितनी प्रभावी होती है? एक जनरल इंसान ये समझना चाहेगा कि अगर मैं रेडियोथेरेपी करा लूं तो मैं वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कितना परसेंट ठीक हो जाऊंगा ये?
1: देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कैंसर का एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है
0: जी।
1: सिर्फ एक थेरेपी से यूजुअली काम नहीं होता है, तो इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। और जहां तक रेडिएशन थेरेपी की बात है तो रेडिएशन थेरेपी जिस इंटेंशन से दिया जा रहा है, तीन इंटेंशन से हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। एक तो होता है रेडिकल रेडिएशन थेरेपी या क्यूरेटिव रेडिएशन थेरेपी, जहां पर हम बीमारी को जड़ से ठीक करने के इंटेंशन से रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो यूजुअली ये वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं डेढ़ से दो महीने के बीच चलते हैं। हफ्ते में 5 दिन हम ट्रीट करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ, तो ऐसे टोटल 6 to 7 weeks का तो ट्रीटमेंट रहता ही रहता है
0: जी।
1: और अगर हम ऑपरेशन के बाद बीमारी उस जगह पर वापस ना आए, अगर हम इस इंटेंशन से देते हैं, ये जो सेकेंड इंटेंशन है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 weeks का ये ट्रीटमेंट रहता है
0: जी।
1: और जो थर्ड इंटेंशन है वो है पैलिएटिव इंटेंशन। हाँ, जहां पर हमारा इंटेंशन बीमारी को जड़ से ठीक करना नहीं, बीमारी को, अगर बीमारी से कोई सिम्टम है जैसे कि पेन है या कहीं
0: जी
1: से ब्लीडिंग हो रहा है, या अगर हड्डी में बीमारी है और वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है और आपको वीकनेस आ सकता है आगे, तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए और तकलीफें कम करने के लिए हम पैलेटिव इंटेंट से रेडिएशन देते हैं, जहां पर पेशेंट की तकलीफें हम कम करने में काफी कारगर होते हैं। तो
0: ये कितने दिनों
1: रेडिएशन
0: के लिए होती है
1: थेरेपी,
0: डॉक्टर साहब,
1: हाँ, तो ये
0: पैलिएटिव
1: वाला जो
0: केयर?
1: होता है, हाँ, पैलिटिव वाला जो है ये 2 वीक्स का ही रहता
0: दो
1: है।
0: हफ्तों के लिए जी, ओके
1: हाँ, या कभी कभी अगर पेशेंट का जनरल कंडीशन अच्छा नहीं है तो उसे हम 1 वीक में भी कंप्लीट कर देते हैं।
0: जी।
1: वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, मगर अगर क्यूरेटिव इंटेंट से देखा जाए तो जहां पर भी इंडिकेटेड है और हम अगर रेडिएशन थेरेपी का उपचार कर रहे हैं तो क्योरेट्स आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्जरी,
0: जी
1: तो काफी अच्छे रिजल्ट्स है। तो अर्ली स्टेज में अगर हम दे रहे हैं या इवन थोड़ा बड़ा हुआ भी अगर रहे तो जो सर्वाइवल रेट्स है वो सर्जरी के कंपेरेबल ही होते हैं। तो 70 to 80% चांस, 80% चांस रहता ही है कि बीमारी ठीक हो जाएगा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये परसेंटेज जो आपने बताया, ये प्रतिशत जो आपने बताया, अंदाजन 70% से 80%, तो बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। दोस्तों आपको सुनकर जरूर बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, रेडिएशन थेरेपी से इस चीज का इलाज हो रहा है। बड़ी ही मजेदार बात है कि रेडिएशन थेरेपी में ना तो आपको कोई इंजेक्शन देना है, ना कोई दवाइयां देनी है। अगर पहली स्टेज में पकड़ में आता है तो 70 से 80% तक डिपेंड करेगा कौन सी तरीके का कैंसर है, ये डॉक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। लेकिन हम मान सकते हैं कि हम 70 to 80% बीमारी से आजाद हो सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये, बहुत खूब। थैंक यू सो
1: हाँ,
0: मच
1: और
0: डॉक्टर साहब।
1: आजकल, हाँ, और कुछ और भी बताना चाहूंगी
0: जी जी
1: इन्फॉर्मेशन कि आजकल इतने टेक्निकल एडवांस आ गए हैं, जो रूटीन हमारे रेडिएशन के टेक्निक्स होते थे उसमें हम एक स्टैंडर्ड डोज पैटर्न फॉलो करते हैं कि पर फ्रैक्शन हमारा 2 ग्रे का ही डोज जाएगा या उससे कम। बट आजकल इतने एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं जिसे हम कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी,
0: जी
1: SBRT, या स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी यानी SRS। तो ये बहुत ही हाई प्रिसिजन, हाईली फोकस्ड रेडिएशन टेक्निक्स होते हैं जहां पर हम ये पूरा क्यूरेटिव इंटेंट, जो 1-1.5 महीने लगने वाला जो ट्रीटमेंट था, उसको सिर्फ हम 5 फ्रैक्शंस में फिनिश कर सकते हैं।
0: अरे वाह,
1: सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटी, हाँ, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक एंड दिस ट्रीटमेंट कि अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत ही अर्ली स्टेज लंग कैंसर है जहां पर हम ऑपरेट किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, और हम अगर SBRT का ट्रीटमेंट करते हैं एलिजिबल पेशेंट के लिए, मतलब,
0: जी
1: तो वो 5 फ्रैक्शंस में सिर्फ कंप्लीट हो जाता है। उसमें पर फ्रैक्शन बहुत ही हाई डोज दिया जाता है, और ऑब्वियसली उसके लिए काफी एडवांस टेक्निक्स और सारा सपोर्टिंग स्टाफ भी वो सारे टेक्निक्स को ट्रीट करने के लिए ट्रेन होना चाहिए। तो थैंकफुली वी हैव दैट ओवर हियर। तो ये, और या तो ब्रेन में कई बार ऐसा रहता है कि बीमारी शरीर का तो ठीक है लेकिन ब्रेन में एक हद लीजन आया हुआ है, या स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रा में एक हद लीजन आया है।
0: जी
1: तो ऐसे केसेस में भी हम जब ये SBRT या SRS को यूज करते हैं तो वो एज गुड एज अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है।
0: बहुत
1: नहीं
0: खूब,
1: तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैल गया, मतलब वो स्टेज 4 हो गया है और अब उम्मीदें कम है, ऐसा हो जाता था। मगर आजकल के जमाने में अगर वो 1-2 जगह गया है और हम अगर SBRT और SRS इस टाइप की टेक्निक से अगर ट्रीट करने में कामयाब होते हैं तो वो एज गुड एज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीजें मैं पूछना चाहता था डॉक्टर साहब, लेकिन आपने खुद ही अपने आप से ही ये सारी चीजें बता दी कि कितनी खूबसूरती से नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके रेडिएशन थेरेपी को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया है, कि ट्रीटमेंट मोडालिटी बहुत कम समय में ही कंप्लीट हो जाती है और उसकी रिस्पॉन्स है, यानी कि उसके जो फायदे हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है। बहुत खूब, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि कि यूं किस किस तरह के कैंसर मतलब रेडिएशन थेरेपी से ठीक किए जा सकते हैं, कौन कौन से, कुछ के नाम बताइए ना।
1: ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्योरली, जैसे मैंने बताया मैक्सिमम कैंसर्स में दो मोडालिटी, मिनिमम दो या तीन, मैक्सिमम तीन मोडालिटीज का जरूरत पड़ता ही पड़ता है
0: जी।
1: तो इवन जहां पर हम कहते हैं कि हम रेडिएशन थेरेपी से प्राइमरी उपचार कर रहे हैं, वहां पर भी हम कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी या ओरल टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं
0: जी,
1: उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए
0: जी। जी, अरे वाह, दैट्स नाइस जी।
1: रेडिएशन थेरेपी से ठीक किए जा सकते हैं, उसमें मुंह के कुछ कैंसर्स हैं जहां पर हम ऑपरेट करना, अगर पेशेंट नहीं चाहता है कि मैं ऑपरेट कराऊं या वो मेडिकली फिट नहीं है, तो जबान का कैंसर हो गया या गले का, लैरिंग्स का कैंसर है, पीएफएस का कैंसर है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर आपको ऑपरेशन करना है तो आपका पूरा वॉइस बॉक्स ही निकालना पड़ेगा।
0: oh.
1: तो कई बार पेशेंट्स इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम प्राइमरी ऑर्गन प्रिजर्विंग अप्रोच, यानी हम ऑर्गन को बचा सकते हैं, उस इंटेंशन से हम पूरा रेडिएशन थेरेपी से उसको अगर अर्ली स्टेज में है तो क्योर करने के इंटेंट से ट्रीट करते हैं। बाकी ये सेम चीज आहार नलिका के लिए भी लागू होती है, और रेक्टल कैंसर्स के लिए भी हम बीमारी को छोटा करने के इंटेंशन से जब कई बार रेडिएशन देते हैं, तो कई बार हमने ऑब्जर्व किया है सिर्फ रेडिएशन थेरेपी और ओरल कीमो के टैबलेट से ही कंप्लीट रिस्पांस कभी कभी आ जाता है। तो ऐसे भी, हाँ, तो ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, ऑब्वियसली हम उनको फॉलोअप पे बुलाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर कभी कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया है तो हम ऑब्जर्व करके हम पेशेंट को काफी टाइम कोलोस्टोमी बैड ना लगे ये हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी ऑपरेशन के बाद जहां पर रेडिएशन थेरेपी देने की बारी आती है, वो फिर शरीर में कहीं पे भी जहां पे ऑपरेट हुआ है उसके बाद, और प्राइमरी जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था लंग कैंसर है
0: जी।
1: तो लंग कैंसर अगर अर्ली स्टेज में है तो हम उसको भी डेफिनेटिव रेडिएशन देते हैं, या अगर हम सार्कोमास वगैरह है तो ये थोड़े से बैड टाइप के कैंसर होते हैं, इनके लिए ऑपरेशन ही बेटर है। तो इन ऐसे सारे जो कैंसर हैं उनको हम ऑपरेशन के बाद रेडिएशन ऑफर करते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत डिटेल में डॉक्टर साहब आपने समझाया, बहुत बहुत सारे जो हमारे दिमाग में गलत फहमियां थी वो आज दूर हुई होंगी। तो वैसे ये इस तरीके की सारे के सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज, यानी कि ये तरीके अच्छे जो प्रिसाइज रेडिएशन थेरेपी के बारे में आपकी आपने बात की, ये हमारे देश में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कुछ थोड़ा सा ज्ञान दीजिए ना।
1: ये सारे मेजर सिटीज जो है, मेट्रोस प्लस आजकल मैक्सिमम टीयर टू सिटीज में भी रेडिएशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और आप जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी ये अवेलेबल है, जैसे कि एम्स हो गए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, साउथ में सीएमसी बेलोर है, या
0: रीजनल कोलकाता में
1: टीएमसी कोलकाता है, रीजनल कैंसर सेंटर्स है, हाँ रीजनल कैंसर सेंटर्स में तो है ही है, बट अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में देखें तो जितने भी मेजर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं,
0: अपोलो एचसीजी,
1: काफी हॉस्पिटल्स में अपोलो एचसीजी, ये सारे मैक्स, इन सारे कॉर्पोरेट्स में रेडिएशन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों आपने जाना कि ये इलाज अब सब तरफ, चारों तरफ अवेलेबल है, चारों तरफ मौजूद है, बहुत आसानी से मौजूद है, तो हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल आराम से अपने डॉक्टर के साथ उससे सलाह लेकर उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और ये पूरा का पूरा क्यूरेबल है, तो डरने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब, ये इलाज कुछ तकलीफ दे भी होता है क्या, कुछ इसमें साइड इफेक्ट्स या कुछ दर्द वगैरह भी होता है क्या?
1: हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा वो भ्रमित है, और हाँ, और उन्हें डर भी लगता है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टेक्निक से ट्रीट कर रहे हैं। रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट पर से इज कम्प्लीटली पेनलेस. जैसे आप सीटी स्कैन होता है पता नहीं पड़ता, वैसे ही आपको मशीन के नीचे हम लिटाकर रखते हैं, मशीन आजू बाजू में घूमता है, इलाज हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा. बट डेफिनेटली ये एक, अगर मैं लॉन्ग कोर्स रेडिएशन की बात करूं तो ये 6 वीक्स का ट्रीटमेंट है.
0: जी.
1: तो बाय द एंड ऑफ 3rd वीक या 4th वीक फिर ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स आने चालू होते हैं.
0: जी.
1: तो साइड इफेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं, अक्यूट साइड इफेक्ट और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट. तो जिस जगह पर रेडिएशन दिया जा रहा है ये उस जगह के हिसाब से साइड इफेक्ट रहेगा. तो सपोज मुंह के या गले के कैंसर के लिए दिया जा रहा है तो उन्हें मुंह में छाले आना, निकलने में दिक्कत होना, मुंह में सूख अपन, अपनी लार जो है ड्राई होने लगती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ और स्वाद चला जाता है, स्किन डार्कनिंग होती है. ये सारे साइड इफेक्ट्स सुनने में ऐसा लगता है ओ माय गॉड अच्छा ऐसा है क्या. लेकिन थैंकफुली जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स विद इन 2 to 3 वीक्स ये चले जाते हैं. और हाँ, और अगर आप दूसरी जगह का, अगर आप एग्जांपल ले, अगर आप ब्रेस्ट के ब्रेस्ट कैंसर के रेडिएशन के लिए दे रहे हैं तो उसमें लंग या हार्ट पे डोजेस का एक इफेक्ट रहता है. बट वो भी आजकल इतने टेक्निकल एडवांसमेंट्स आ गए हैं कि वो हम कम से कम करने में काफी कामयाब हो गए हैं. और न्यूअर टेक्निक से जो पहले के जमाने में लोगों के मन में एक डर था कि हमारी चमड़ी काली हो जाएगी, जल जाएगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आजकल स्किन डार्कनिंग होना इज कॉमन, एटलीस्ट इट शोज दैट रेडिएशन इज वर्किंग, बट ये रिवर्सिबल साइड इफेक्ट है. और अगर ऑन ट्रीटमेंट जो उनको पेशेंट्स को केयर लेने के लिए बताया जाता है अगर वो केयर बराबर लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं.
0: बहुत बढ़िया. तो दोस्तों आपने जाना कि रेडिएशन थेरेपी की साइड इफेक्ट्स बहुत कम है. मजेदार बात यह है कि यह इलाज तकलीफ देह नहीं है, ये बिल्कुल पेनलेस है. और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ी चमड़ी काली पड़ सकती है या शायद स्वाद चला जाए, लेकिन ये सब वापस आ जाते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं, लार सूख जाती है, कुछ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं मुंह में, लेकिन ये सब इनका ट्रीटमेंट होता है और ये कुछ समय में जब आपकी थेरेपी बंद हो जाएगी 1 से 2 हफ्ते में वो ठीक भी हो जाएंगे. तो ये कितनी मजेदार बात है, बहुत बढ़िया. तो डॉक्टर साहब वैसे ये जो साइड इफेक्ट्स की आपने बात करी कि लार सूख जाएगी या स्वाद चला जाएगा,
1: हाँ, अगर मुंह का कैंसर के लिए हम रेडिएशन दे रहे हैं तो
0: उसी केस में,
1: अगर हाँ तो अगर पेल्विक कैंसर के लिए दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े अलग रहेंगे,
0: अलग
1: जैसे कि पेशाब में जलन होना या लूज मोशन होना. तो डिपेंडिंग ऑन द साइट साइड इफेक्ट वेरी करेंगे, बट मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स आर रिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स.
0: तो इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी तो कुछ दवाइयां होती होंगी ना जो बड़े आराम से हम लोगों को हेल्प कर देंगी पेन के लिए या फिर छालों के लिए.
1: बीइंग अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कई बार अगर मुझे पेशेंट कहते हैं कि साइड इफेक्ट के डर से मैं इलाज नहीं कराऊं और मैं कुछ दूसरा कराऊं, तो मैं ये कहूंगी साइड इफेक्ट हो रहा है मतलब अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि रेडिएशन काम कर रहा है.
0: जी.
1: तो साइड इफेक्ट को हम मना नहीं करेंगे, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत होना ही है, क्योंकि रेडिएशन दे रहे हैं तो आजू बाजू में थोड़ा बहुत रेडिएशन जाएगा ही जाएगा.
0: बिल्कुल सही कहा.
1: बट उसको कम से कम हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे एडवांस टेक्निक्स से आजकल हमें ये करना संभव है. और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जो मुंह में सूखापन या जो भी आप कहें लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द साइट, वो भी हम काफी कम करने में कामयाब हुए हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप हमें रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रीटमेंट के दौरान मिलते रहिए और जो भी सिम्टम रहता है तो सिम्टम के अकॉर्डिंग फिर हम उन्हें दवाई देते हैं कि दर्द हो तो दर्द की दवा, या मुंह की सफाई रखना बहुत जरूरी है अगर मुंह का कैंसर है तो मुंह की सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वो पेशेंट मुंह की सफाई नहीं रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली वहां इन्फेक्शन होके चीजें कॉम्प्लिकेट होने का रिस्क रहता है. तो ये बेसिक केयर जब हम बताते हैं कि स्किन केयर, बिकॉज स्किन डार्कनिंग होने का रिस्क रहता है,
0: जी
1: तो हम पेशेंट्स को स्पेसिफिकली काउंसिल करते हैं कि आपको उस स्किन को रब नहीं करना है, या शेविंग नहीं करनी है मेल्स के लिए, या कॉलर वाले शर्ट्स नहीं पहनने हैं,
0: जी
1: ताकि स्किन हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें कि स्किन थोड़ी पतली होने का रिस्क रहता है. और ब्राउन वो इसीलिए होती है कि जब रेडिएशन थेरेपी चलती रहती है, और ऐसे में अगर आप कॉन्स्टेंट कुछ भी फ्रिक्शन करेंगे तो वो निकलने का डर रहता है. तो इसलिए हम ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स को बताते हैं कि आप बड़े गले के कपड़े पहनिए या ढीले कॉटन के कपड़े पहनिए, जिससे वो स्किन पर टाइट बंधी ना रहे. तो एक हो गया स्किन केयर, एक होता है ओरल हाइजीन के लिए ओरल केयर. उसमें हम सॉल्ट एंड सलाइन गार्गल करने बोलते हैं मुंह के कैंसर पेशेंट को. हम कोई दूसरा माउथ वॉश या माउथ गार्गल भी एडवाइज नहीं करते हैं. तो और खाने में बिना मिर्ची का खाना या ब्लैंड डाइट अगर खाए तो ज्यादा अच्छा. फ्राइड फूड्स के लिए हम मना करते हैं. और अगर पेल्विक कैंसर्स हैं या पेट के कई कैंसर हैं, तो उसमें भी यही है कि आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, बाहर का खाना नहीं खाना है, फ्रेशली कुक फूड खाना है, बाहर का फ्रूट पानी वगैरह भी नहीं लेना है. क्योंकि कई बार बाहर की पानी से कई बार अगर हमारा पेट खराब हो गया और फिर हम बोले कि ये ट्रीटमेंट की वजह से हुआ, तो हम ये सारे बेसिक काउंसलिंग करते हैं कि ढीले कपड़े पहनना है, स्किन केयर लेना है, माउथ केयर लेना है, हाइजीन केयर लेना है, इस टाइप से.
0: बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। दोस्तों आपने सुना भी, और वैसे भी जब हम ये इस तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई और ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो हमें इन चीजों का तो ख्याल रखना ही होगा कि हम हल्का फुल्का खाना खाएं, ढीले कपड़े पहने, अपनी हाइजीन का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, गार्गल करें, हल्का फुल्का खाना लें, कोई फ्राइड ना लें बिल्कुल भी। खुश रहें, अपने दिल को स्वस्थ रखें, अपने चित्त को प्रसन्न रखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस से आपके डॉक्टर को कॉन्फिडेंस आता है और वो बहुत खुशी खुशी आपका ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। डॉक्टर शानू, थैंक यू सो मच। अगर आपकी इजाजत हो तो चलते चलते एक बिल्कुल हल्का फुल्का सा सवाल पूछना चाहूंगा, ट्रीटमेंट पार्ट से बिल्कुल अलग, तो उससे हमारे सुनने वालों को या फिर शायद कोई जो पेशेंट सुन रहे हो उनको भी लगेगा कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात की। फर्ज कीजिए आपकी तीन इच्छाएं पूरी करने वाला एक जिन आपको कहीं से मिल जाए, तो आप तीन क्या इच्छाएं मांगेंगी मैम?
1: तीन इच्छाएं? ओह माय गॉड, ये एक सरप्राइज क्वेश्चन था.
0: जी
1: इसमें मैं या तो एक तो मैं इच्छा ये मांगूंगी कि इस धरती में किसी को भी बीमारी ना हो,
0: बात को
1: और वो जो एक पीड़ा होती है जो पेशेंट को या फैमिली को जो एक तकलीफ से गुजरना पड़ता है, वो
0: जी
1: हेल्थ वाइज किसी को गुजरना ना पड़े.
0: जी
1: दूसरा ये है कि मैं ये चाहूंगी कि इस जगह पर, यानी किसी को फाइनेंशियली भी इतनी मुसीबतें

0: से स्वस्थ रहे, कोई भूखा ना हो और अपने परिवार के साथ वो सुखी सुखी रहना चाहती है। जाहिर सी बात है वो आपके लिए भी यही चाहती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शानू। और बस चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई पेशेंट या कोई कोई भी एक नॉर्मल इंसान आपसे और बेहतर जानकारी के लिए संपर्क करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है आपसे संपर्क?
1: तो पेशेंट मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7024110502। ये नंबर मैं मेरे पेशेंट्स के साथ में शेयर करती हूँ और वो मुझे मेरी वेबसाइट भी है drshanujain.com, वो उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं या हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे भी अगर कॉल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ईमेल लिख सकते हैं, मेरा मेल आईडी है drshanu.onco@gmail.com drshanu.onco@gmail.com।
0: बहुत खूब दोस्तों, डॉक्टर साहब ने अपनी मेल आईडी आपको बताई है, अपना फोन नंबर दिया है, उनकी वेबसाइट भी है। अगर आपको और जानकारी चाहिए हो या फिर आप इलाज से संबंधित डॉक्टर शानू मैम से जुड़ना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। जस्ट इन केस आप भूल भी जाते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं कि हम डॉक्टर शानू मैम से आपको जुड़वा दें। डॉक्टर शानू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू माई प्रोग्राम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके हाथ में आपके हाथों में ईश्वर एक ऐसी जादू की छड़ी दे जिससे कि आपके सारे मरीज बस आपके पास पहुंचते ही ठीक हो जाए, मेरी दुआ है।
1: बहुत
0: बहुत शुक्रिया। थैंक यू, प्लीज टेक केयर।
1: यस, थैंक यू। या

इतनी जानकारी से भरे हुए प्रोग्राम के बाद आइए थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं और कुछ गीत सुनते हैं। मैं आपका दोस्त समीर। दोस्तों, कई बार मैंने कई लोगों को वॉकिंग करने के दौरान यानी कि चलने के दौरान पीछे की तरफ चलते हुए देखा, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं ये। थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन आइए जानते हैं इसके कुछ और सच। सो बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की ओर चलने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इससे विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इससे शरीर के संतुलन और समन्वय में सुधार होता है। बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की तरफ चलना बुजुर्गों, वयस्कों या चोट से उबरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि यह गिरने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पीछे की ओर चलने से घुटनों और पीठ के नीचे हिस्से पर तनाव कम हो जाता है। क्योंकि चलने के लिए छोटे कदमों की लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे चलने या दौड़ने की तुलना में जोड़ों पर कम प्रभाव पड़ता है। बैकवर्ड वॉकिंग मानसिक स्वास्थ्य जैसे दिमाग तेज होना, एकाग्रता और यहां तक कि मूड सुधार में भी योगदान करता है। पीछे की ओर चलने के अभ्यास को फिटनेस दिनचर्या में शामिल करना बड़ा आसान है और उसे घर के अंदर या बाहर भी किया जा सकता है। ये गति में बदलाव और वर्कआउट की विविधता में शामिल है, जिससे रोजाना व्यायाम करना दिलचस्प और प्रेरक भी बन सकता है। इस संबंध में फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह आप ले सकते हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बारे में? विशेषज्ञ कहते हैं कि मांसपेशियों की मजबूती से लेकर जोड़ों के तनाव को कम करने तक बैकवर्ड वॉकिंग बड़ी फायदेमंद है। क्योंकि पीछे चलने के लिए छोटे कदमों की जरूरत होती है, इसलिए जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है। मजेदार बात हुई। आइए दोस्तों, सुनवाता हूं चलते रहने पर ही एक गीत। ये गीत है आर पार फिल्म का, जो 1954 में बनी थी। इसकी गायिका हैं गीता दत्त जी, म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओपी नैयर साहब और इस गीत को लिखा था मजरू

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने पूछा, बच्चों कौन मुझे नीचे दिए गए दो वाक्यों में अंतर बताएगा। रमेश ने बर्तन धोए, रमेश को बर्तन धोने पड़े। छात्र ने कहा, मैडम पहले वाक्य में तो रमेश अविवाहित है और दूसरे में रमेश की शादी हो चुकी है।
2: आइए दोस्तों फिर से सुनते हैं एक और बात इधर की उधर की। आइए दोस्तों आपको बताता हूं हमारे देश की ही कुछ अजीबोगरीब चीजें। अभी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक अनोखा नगाड़ा बनाया गया है। जी हां, बजाने वाला नगाड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा है। अब इसका वजन करीब 1100 किलोग्राम है। इसका नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसे रीवा, प्रयागराज, दिल्ली, अलीगढ़ के कलाकारों ने मिलकर करीब करीब एक महीने से ज्यादा समय में तैयार किया। जाइए देख के आइए। नगाड़े पर तो नहीं लेकिन डफली पर एक गीत सुनवाता हूं दोस्तों। फिल्म का नाम है सरगम। इस गीत को गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी जी ने और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। इस गीत को फिल्माया गया ऋषि कपूर और जया प्रदापे।

दी है और साथ ही ये घोषणा की है कि अहमदनगर शहर का नाम मराठा रानी अहिल्या बाई होलकर के नाम पर अहिल्या नगर रखा जाएगा। अहमदनगर का ये नाम अहमद निजाम शाह के नाम पर पड़ा था। इसी तरह सन 2022 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धारा शिव कर दिया गया था। ये लीजिए दोस्तों, नगरिया के ऊपर, नगर के ऊपर एक गीत सुनते हैं फिल्म विरासत से। गायक हैं अभिजीत

तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों से और प्यारे प्यारे गीतों के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा इसी तरीके का एक शानदार आपकी सेहत के लिए प्रोग्राम को लेकर। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, भूले नहीं ना, समीर।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार, जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त नितिन, और आज मेरे साथ श्री अनुपम मिश्रा जी जुड़े हैं। अनुपम जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: थैंक यू।
0: अनुपम जी, हमारे सुनने वालों को कुछ अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: जी सर। सर, मेरा छोटा सा परिचय है। विष्णु की तिथि अवतार श्री बरा भगवान की पावन भूमि श्री सोनोजी धाम का दासगंज उत्तर प्रदेश के श्री सरल धाम में जन्मा अनुपम मिश्र अणु साहित्यकार कवि गीतकार। शैक्षिक सफर मेरा रहा है एमए इंग्लिश बीएड और पूर्व प्रिंसिपल सीबीएसई स्कूल राजस्थान, युवा कवि आगरा आकाशवाणी केंद्र, मुख्य सचेतक आंदोलक बीएड बेरोजगार संघ के रूप में जाना जाता हूँ सर मैं। वर्तमान में मैं सामाजिक मंच सरल प्रेरणा साहित्यिक संस्था साहित्य लोक रजिस्टर्ड और दिव्यांगों की राष्ट्रीय संस्था सक्षम संस्था में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ सर।
0: जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: अनुपम जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर आपने। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अभिनेता बनूं
0: जी,
1: क्योंकि मुझे लगता था कि समाज की को अगर सही दिशा में एक सही नेतृत्व मिल जाए
0: जी
1: तो एक आदर्श समाज स्थापित किया जा सकता है। मेरे पिता श्री विष्णुदयाल शर्मा सरल जी रेलवे में होते हुए भी उन्होंने अपना नेतृत्व दिया था
0: जी,
1: और एक आदर्श समाज नेता अभिनेता और सरल प्रेरक मोटिवेटर की प्रदान कर सकता है, इसलिए मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अभिनेता बनूं।
0: ओह, तो अभी आप क्या करते हैं?
1: अभी मैं कोचिंग सेंटर में मोटिवेटर हूं
0: जी। अच्छा,
1: सरल प्रेरक के रूप में इंग्लिश टीचिंग करता हूं।
0: आपका तो हिंदी भी इतना बहुत ही बढ़िया है और आप इंग्लिश, आप दोनों वाइस वर्सा ऐसा बोल सकते हैं कि इंग्लिश भी बोल रहे हो अच्छी तरह से बोल सकते हैं और हिंदी भी,
1: दोनों
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है।
1: ओके सर।
0: तो दोस्तों, सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: अनुपम जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे, आपका फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: जैसा अभी सर आपने कहा कि इंग्लिश मेरी अच्छी है, तो इंग्लिश अच्छी का श्रेय मैं अपने श्रद्धेय टीचर जो देवलोक गमन कर चुके हैं, गिरिजाशंकर शुक्ला जी सर
0: जी,
1: इंग्लिश के टीचर थे, जिन्होंने जटिल टॉपिक ग्रामर और ट्रांसलेशन को मैथ के फॉर्मूले के अंदाज में समझाकर मुझे योग्य बनाया, और आज भी वो उनका पढ़ाया हुआ मेरे दिलो दिमाग में अमिट है। दूसरा ड्राइंग टीचर जो विजय सक्सेना जी सर थे, उन्होंने हमेशा मुझे ए ग्रेड दिया और बेहतर ड्राइंग के लिए टिप्स देते रहते थे, तो मेरी आज ड्राइंग बेमिसाल है, और मेरे बच्चों की भी आशीष और देवांशु और मेरे स्कूल के बच्चों की भी ड्राइंग बेमिसाल है, अवार्ड प्राप्त करते हैं।
0: क्या बात है अनुपम जी, ये बहुत ही कम लोगों को ऐसा नसीब होता है जो बहुत ही, कहने का मतलब है इतने सारा टैलेंट एक इंसान में भरा रहता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
0: बड़ी खुशी हुई मुझे। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा नगमा सुनते हैं।

0: मेरा चौथा सवाल, कौन से तीन शब्द आपको सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं?
1: सर बहुत अच्छा सवाल है ये। मेरे पैतृक गुण मिले हैं मुझे समाजी सेवा करने का, मानव सेवा करने का, तो तीन शब्द हैं जो मुझे मिले हैं, परहित, लिहाज और सरल प्रेरणा, जो कि आदर्श समाज के लिए बेहद जरूरी हैं
0: जी।
1: और जिसको मैंने कला की दृष्टि में अपनाया है अपने जीवन में, अनुगायन, अनुगीत और सरल प्रेरक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में
0: जी।
1: और लिहाज का दूसरा रूप अनुगायन है सर, जो मैं अच्छा प्रमाणित कर पा रहा हूँ अपने गायन में सर।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आइए सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसे बनी थी अनुपम जी?
1: सर, इस संदर्भ में एक ही बात कहूंगा कि मेरा स्वभाव, मैं घर में लड़ेता रहा था, बहुत लाड प्यार में पला था, मेरी हर जिद पूरी होती थी। तो एक दिन मेरी जिद पूरी नहीं हुई आलू पराठे की, तो एक दिन मजबूरी बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद बनाऊंगा, मत बनाओ कोई भी मेरे लिए। तो आलू के पराठे बनाए, तो मैंने वहां कहीं पे तो आलू जा रहे थे, कहीं आटा जा रहा था, और आग की लपटों ने भी मुझे झुलसा दिया, स्किन को जला दिया। बड़ी मुश्किल से ये बने, मोटे तो मोटे मोटे जोटे जले फले जैसे भी बने थे, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थे। तो सारे बनने के बाद सारे मेरे परिवारजनों ने टेस्ट करने में खा लिए, मुझे बखूबी मुश्किल से मुझे एक दो पीस ही मिला। तो सब लोग कहने लगे ऐसे रोज बनाया करो भाई। तो इस तरह से मैंने ये अपनी जिद पूरी की और आलू पराठे मैंने पहली बार बनाए, जो कि टेस्टी तो बने लेकिन अच्छे नहीं बने,
0: यानी जल गए थे।
1: जल गए थे और आलू कहीं बाहर निकल निकल के भाग रहे थे उसके। तो मेरा जी, तो इस तरह से
0: अरे वाह,
1: सबको टेस्टी लगे, सबको टेस्टी लगे।
0: तो दोस्तों सुनते हैं एक शानदार गीत।

0: जाए पट्टी
1: क्या
0: थोए परेशान
1: हाथ छोड़।
0: हाई मैंने हाथा पकड़े तो तूने दाता ऐसे नप्पू ऐसे बता
1: क्या बात करता है।

0: अनुपम जी, आपकी हॉबीज क्या है और थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: सर, मेरा स्वभाव है कि लोगों के हित में काम करना
0: जी,
1: और मेरे पैतृक गुण हैं, तो मैंने अपनी हॉबीज को चुना। वैसे तो हॉबीज मेरी कई सारी हैं, स्पोर्ट्स में भी है, एजुकेशन में भी है, मोटिवेशन में भी है, लेकिन मानव सेवा को मैंने अपनी मुख्य हॉबी के रूप में अपनाया।
0: अच्छा।
1: और मुझे लगा कि इस हॉबी से एक समाज को सशक्त रूप में सामने लाया जा सकता है, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी अच्छी तरह से अपना जीवन बसर कर पाए।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये सेवा में आप ऐसे क्या करते हैं, जैसे लोग सेवा भाव का बोल रहे हैं,
1: जैसे हाँ, मानव सेवा में जैसे किसी को जरूरतमंद की सेवा करना है, किसी को कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसको मार्गदर्शन देना है
0: जी।
1: और सबसे बड़ी बात कि हमें अपना जीवन, बच्चा अपना जीवन कैसे जिए, तो उसके लिए मैं प्रेरित करता हूँ।
0: अच्छा।
1: उसके जीवन में
0: जी।
1: हाँ जी, और इससे एक मैं ये सामने वाले बच्चों को फायदा भी बताता हूँ कि इस सेवा भाव से, इस हॉबी से मनुष्य को समाज में कहीं भी डर नहीं लगता है, उसे लगता है सब मेरे हैं।
0: ओके
1: जी सर।
0: जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: और आपकी खुशी के रास्ते में कौन सी बाधाएं आती है?
1: बहुत ही सही प्रश्न पूछा है सर, और मैं जाने अनजाने में इन बाधाओं को महसूस करता हूँ। तो अनुमन की अगर बात माने तो मुझे यही लगता है कि सामने वाले को समझ पाने में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, कि सबको अच्छा समझता हूँ सर मैं, क्योंकि मेरे यदि मानव सेवा की भावना है तो मुझे सब अच्छे लगते हैं। और हकीकत तो ये है सर कि आज दुनिया में जलन करने वाले, टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं, तो आगे बढ़ने से आपको हर्ष में रोकते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बाधा मेरी यही है, और मुझे खुशी मिलती है लोगों की भलाई करने में, लेकिन मेरी लोग टांग खींचते हैं, तो ये सबसे बड़ी बाधा।

0: मुझे लगती है सर कि मैं सबको अच्छा समझता हूँ।
1: ये तो सही, आप सही कह रहे हो कि अच्छे लोगों की आज कदर नहीं है इस दुनिया में,
0: जी सर,
1: ये
0: जी
1: आपने
0: सर,
1: बहुत सही बात कही है।
0: जी सर,
1: तो दोस्तों चलिए सुनते एक और नगमा।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार, जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त नितिन और आज मेरे साथ श्री अनुपम मिश्रा जी जुड़े हैं। अनुपम जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: थैंक यू।
0: अनुपम जी, हमारे सुनने वालों को कुछ अपना परिचय दीजिए। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं?
1: जी सर, मेरा छोटा सा परिचय। विष्णु की तिथि और श्री बरा भगवान की पावन भूमि श्री सोनोजी धाम का दासगंज उत्तर प्रदेश के श्री सरल धाम में जन्मा अनुपम मिश्र अणु साहित्यकार कवि गीतकार। शैक्षिक सफर मेरा रहा है एमए इंग्लिश बीएड और पूर्व प्रिंसिपल सीबीएसई स्कूल राजस्थान, युवा कवि आगरा आकाशवाणी केंद्र, मुख्य सचेतक आंदोलक बीएड बेरोजगार संघ के रूप में जाना जाता हूँ सर। मैं वर्तमान में मैं सामाजिक मंच सरल प्रेरणा साहित्यिक संस्था साहित्य लोक रजिस्टर्ड और दिव्यांगों की राष्ट्रीय संस्था सक्षम संस्था में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं सर।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: अनुपम जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर आपने। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अभिनेता बनूं
0: जी,
1: क्योंकि मुझे लगता था कि समाज की को अगर सही दिशा में एक सही नेतृत्व मिल जाए
0: जी
1: तो एक आदर्श समाज स्थापित किया जा सकता है। मेरे पिता श्री विष्णु दयाल शर्मा सरल जी रेलवे में होते हुए भी उन्होंने अपना नेतृत्व दिया था
0: जी,
1: और एक आदर्श समाज नेता अभिनेता और सरल प्रेरक मोटिवेटर ही प्रदान कर सकता है, इसलिए मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अभिनेता बनूं।
0: तो अभी आप क्या करते हैं?
1: अभी मैं कोचिंग सेंटर में मोटिवेटर हूं
0: जी। अच्छा,
1: सरल प्रेरक के रूप में इंग्लिश टीचिंग करता हूं।
0: आपका तो हिंदी भी इतना बहुत ही बढ़िया है और आप इंग्लिश, आप दोनों वाइस वर्सा ऐसा बोल सकते हैं कि इंग्लिश भी बोल रहे हो अच्छी तरह से बोल सकते हैं और हिंदी भी,
1: दोनों
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है।
1: ओके सर।
0: तो दोस्तों सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।